0: ही फराहम करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें। अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं। वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं। प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं। आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ। नंबर मत भूलिएगा 07977317760।
1: Fast Track Solutions, we guarantee to repair your vehicles within 4 weeks, subject to terms and conditions.
2: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
3: Are you peeping, Tom?
2: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
4: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
3: Come up and see me sometime.
2: Case closed.
5: Aap sun rahe hain Radio Sangam 107.9 FM. Dilon ko milane wala.

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
4: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
5: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
6: यू पीपिंग टॉम
5: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजन It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
0: नफ्सिन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
4: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924 466771 Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
3: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
4: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
5: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
3: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
3: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
6: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
7: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
2: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
8: जागते रहना, जागते रहना.
9: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
8: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सबसे रेड होगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
9: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप.
8: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
8: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
1: Radio Sangam, 87.9 FM.
2: बेटा पापा को हार्ट अटैक आया।

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
4: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
5: आई'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising
6: are you peeping tom
5: sadly it wasn't in there so I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.

0: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
4: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
5: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
6: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
7: Are you peeping Tom?
6: Sadly, it wasn't in there. So, I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
8: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
7: Come up and see me sometime.
6: Case closed.
9: Jagte rehna, jagte rehna.
10: So jaunga to kya hoga bhai?
9: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se red hoge kyunki paratha stop leke aa raha hai aalu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske sath sath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
10: Stop! Are wah! पराठा स्टॉप?
9: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
10: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
9: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: iPhone doesn't have a knob.
1: Radio Sangam, 87.9 FM.

0: तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
2: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
4: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
5: आर यू पीपिंग टॉम
4: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजंस इट वाज ब्रोकन यस इट वाज पॉइंटलेस देन इट हिट मी एडवर्टाइजिंग ऑन दिस लोकल रेडियो station's the answer. It's low cost, effective and memorable.
6: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
5: Come up and see me sometime.
4: Case closed.
0: नफ्सिन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
2: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلیفون 01924 66771 Mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester, and Sheffield also.
7: Lock it in and rip the knob off.
5: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
7: Radio Sangam 87.9 FM.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है
3: हाँ जी याद है
2: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
3: हाँ जी चाहिए
2: चांदी चाहिए
3: हाँ जी चाहिए
2: कहाँ से लोगे
3: चाचा ज्वेलर्स
2: फिर से बोलो
3: चाचा ज्वेलर्स
2: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहाँ से लोगे
3: चाचा ज्वेलर्स
4: केड़ी ऑफर लाइयां वहां सानू भी तो दसो
5: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
6: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342553 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स
7: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Singham team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
8: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
9: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
10: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
11: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
7: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
11: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
12: यस, जॉइन द यूकेज मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
10: अभी कॉल कीजिए 01484-549947।
7: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
13: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
14: आर यू पीपिंग टॉम?
13: सैडली, इट वाजंट इन देयर। सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
15: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
14: Come up and see me sometime.
13: Case closed.
16: जागते रहना, जागते रहना.
17: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
16: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सबसे रेड होगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
17: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप.
16: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
17: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
16: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
1: From the Sky News Centre at 4, the World Health Organization says three people have died in a suspected virus outbreak on a cruise ship in the Atlantic. A British tourist is being treated in hospital in South Africa. Hantavirus infections are typically linked to exposure to infected rodents. A one-minute jab's being made available on the NHS in England that could cut some cancer treatment times by up to 90%. Anna Bates has more.
2: The immunotherapy injection being rolled out for more than a dozen cancers would, in effect, replace long periods spent on a drip for pembrolizumab patients. The jab's given every 3 to 6 weeks, depending on someone's condition. Experts say the drug itself, in terms of cost to the NHS, is the same, but reducing the need to prepare IVs will free up staff. It's expected to benefit tens of thousands of people each year.
1: Almost all residents have been able to return home after an explosion killed two people at a property in Bristol yesterday morning. A child's among three others in hospital. Avon and Somerset Police says a cordon's now been significantly reduced. The incident in Sterncourt Roads being treated as domestic related, not terrorism. Here's Superintendent Matt Ebbs.
3: A woman and a man have died at the address, and we're treating the explosion as suspicious. Their families have been updated and are being supported by specially trained officers, and our thoughts are very much with them.
1: Manchester United scored late to get past rivals Liverpool 3-2 in a dramatic Premier League clash at Old Trafford. It secures the third-place side a Champions League spot. Former United manager Sir Alex Ferguson was taken to hospital for precautionary checks after feeling unwell before the game. Tottenham moved out of the relegation zone with a 2-1 victory at Aston Villa. Celtic won at Hibs by the same score to move level on points with Scottish Premiership leaders Hearts. And after a dramatic race, the Miami F1 Grand Prix was won by Championship leader Kimi Antonelli. That's the latest. I'm Faye De Silva.
4: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
5: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
6: हाँ जी याद है.
5: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
6: हाँ जी चाहिए.
5: चांदी चाहिए?
6: हाँ जी चाहिए.
5: कहाँ से लोगे?
6: चाचा ज्वेलर्स.
5: फिर से बोलो.
6: चाचा ज्वेलर्स.
5: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा, जल्दी बताओ कहां से लोगे?
6: चाचा ज्वेलर्स. चाचा ज्वेलर्स
7: केड़ी ऑफर लाईया वा, सानू भी तो दसो.
8: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर. यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है, और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में, और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू.
9: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE. टेलीफोन नंबर 014 2342553. Get down there for some great bargains.
10: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट. रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें. रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं. Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
11: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
12: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
13: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
14: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
12: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
10: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
12: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
15: यस, जॉइन द यूके

दिन रात आपके साथ रेडियो संगम अब वक्त हुआ जाता है अजान फज्र का। आप अपनी मकामी मस्जिद के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: lock it in and rip the knob off.
1: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
0: Radio Sangam, 87.9 FM.
2: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
3: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
2: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
4: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
5: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवरटाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें। रेडियो संगम पर एडवरटाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
6: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
7: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
8: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
6: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
6: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
9: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन, रेडियो संगम।
8: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
5: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
10: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
11: आर यू पीपिंग टॉम?
10: सैडली, इट वाजंट इन देयर। सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजन। It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
12: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
11: Come up and see me sometime.
10: Case closed.
13: Jagte rehna, jagte rehna.
14: So jaunga to kya hoga, bhai?
13: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain, un sabse red hoge, kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha tikka, aur iske saath saath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
14: Stop! Are wah! पराठा स्टॉप?
13: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
14: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
13: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील, HD15HU, ओपनिंग सून। टेलीफोन 01484542700।

0: मुलाकात लो अथवा 01484-2349-5 पर कॉल करो। किर्कलीस काउंसिल वेलनेस सर्विस कायम माटे छोड़ी दो।
1: जायकातुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका। कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग, मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ। मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश।
2: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA, टेलीफोन 01924-466-771, mobile 07971-092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

मेरे रब मिल दर्द बनायो सुखां दे विच वस दियो लोको ओ लोको मेरे रल मिल

0: वस लगदा है मोड़ लियाओ लोको वस लगदा है मोड़ लियाओ।
1: पता टाइम होना गया तो मेरा भी दिल फिर भरदा है जदों वस दे सा साडे वसण दिया जग देंदा सी तशबीहां जदों वसदे सां ओ साडे वस

0: पाई
1: हजूर
0: पतझड़ मौसम लंग गया माही आया फगन ते शाखा फुटिया पतझड़ मौसम लंग गया।

0: मुसाफिर सब घर आ गए, तेनु कौन नहीं देता छुट्टियां।
1: आपके कहने पे वो दोबारा,
0: हाँ।

0: iPhone doesn't have a knob.
1: Radio Sangam, 87.9 FM.

0: वाह खान साहब, आपको हमारे ये जो हाजरीन है अब इनकी फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी।
1: जी मैं हाजिर। हजरत अब्दुल हमीद आदम का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि इधर को आ ही गए हो साहिब तो हम फकीरों से बुखल कैसा, यहाँ भी इम शब्द कयाम कर लो दुआएं देगा गरीब खाना।

0: you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
3: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
4: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947. Kya aap apna confidence level badhana chahte hain?
5: Kya aap 52 countries mein apni awaaz pahunchana chahte hain?
6: Kya aap apni fan following banana chahte hain?
7: Kya aap technology ko aur seekhna chahte hain?
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
5: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
8: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
7: अभी कॉल कीजिए 01484549947
4: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
9: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
10: आर यू पीपिंग टॉम
9: सैडली इट वाजंट इन there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
11: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
10: Come up and see me sometime.
9: Case closed.
12: जागते रहना, जागते रहना.
13: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
12: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
13: स्टॉप. अरे वाह, पराठा स्टॉप.
12: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
13: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
12: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

भी हजर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं, सिदरा के समर भी। कुरान से अजल से अबद तक की खबर है, कुरान में अजल से अबद तक की खबर है, कुरान ही में तज़किरा जिन्न और बशर है, कुरान की आयात में रातें भी हैं दिन भी, कुरान में इंसान भी शयातीन भी जिन भी। कुरान तो मंबाए करम जूद सखा है, कुरान तो मंबाए करम जूद सखा है, कुरान नवाजिश इनायत अता है, कुरान तो इंसानों पे एहसान है रब का, कुरान हकीकत में खजीना है अदब का, कुरान तो गंजीना है अस

और मोहम्मद रहमतल्लिल आलमी खुदा की जात रब्बिल आलमी है, मोहम्मद रहमतल्लिल आलमी है, खुदा की खुदाई की वुसअत जहां तक, मोहम्मद की शान रहमत वहां तक, जहां तक खुदाई वहां तक मोहम्मद।

आए बंदे, मैंने चाहा था हो बस्ती ओहद की वीरा, पर ये महबूब की मर्जी थी मिले इसको अमा। मैंने चाहा था तायफ में कयामत आए,

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है
3: हाँ जी याद है
2: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
3: हाँ जी चाहिए
2: चांदी चाहिए
3: हाँ जी चाहिए
2: कहाँ से लोगे
3: चाचा ज्वेलर्स
2: फिर से बोलो
3: चाचा ज्वेलर्स
2: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहाँ से लोगे
4: चाचा ज्वेलर्स
5: केड़ी ऑफर लाई है वहाँ सानू भी तो दसो तो फिर सुनिए चाचा के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
6: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342553 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स
7: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Singham team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
8: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
9: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
10: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
8: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
7: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
8: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
11: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
10: अभी कॉल कीजिए 01484549947
7: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
12: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
13: आर यू पीपिंग टॉम
12: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
14: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
13: Come up and see me sometime.
12: Case closed.
15: Jagte rehna. Jagte rehna.
16: So jaunga to kya hoga, bhai?
15: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain, un sabse red जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
16: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
15: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
16: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
15: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हरिसफील HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484-542700
17: रोतों को हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM
0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app, download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
18: Sky News Centre at 7. A British tourist is being treated in hospital in South Africa after a suspected outbreak of hantavirus on a cruise ship travelling from Argentina. The World Health Organization says three people have died in hospital. The Prime Minister is in Armenia, where he's meeting EU leaders about joining a £78 billion loan scheme for Ukraine. Sir Keir Starmer will say he wants to ensure Kyiv gets the military equipment it needs in its war with Russia. The PM says he hopes it would also give UK defence firms access to future contracts.
19: We'll give Ukraine capability that it desperately needs in year five of this conflict. It's very good for the UK because it'd be capability that leads to jobs in the United Kingdom, and it's very good for UK-EU relations, which is very important as we go on to the various discussions we're going to have today.
18: At least 10 people have been taken to hospital following a shooting near Oklahoma City in the US. Authorities say they received multiple reports of shots being fired near Arcadia Lake in Edmond. Donald Trump's calling his plan to free ships stranded in the Strait of Hormuz a humanitarian gesture. The US president hasn't provided any details on how he'll ease the Iranian blockade. The NHS in England's introducing a one-minute jab that could benefit tens of thousands of cancer patients each year. The immunotherapy injection aims to treat more than a dozen types of cancer, cutting some treatment times by up to 90%. Experts say reducing the need to prepare for drips will free up staff. Stephen Friend has a melanoma.
20: When I was first told that I'd be having immunotherapy, it was initially going to be the once every 4 weeks with the intravenous drip. And that was kind of a bit daunting, the thought of coming and sitting in a ward for half an hour or three quarters of an hour, however long it takes. And now with this new process, it takes a lot of that stress away.
18: In sports, Spurs climbed out of the Premier League relegation zone with a 2-0 win away to Aston Villa. Manchester United meanwhile beat Liverpool 3-2. And in the Scottish Premiership, Celtic won 2-1 at 10 Man Hibs. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.
21: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station, Radio Sangam, 107.9 FM.
22: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
22: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
23: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
24: जागते रहना जागते रहना
16: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
15: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
16: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
15: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है next to select
16: bus main ab nahi soonga
15: paratha stop 9 black road huddersfield hd15hu opening soon telephone 01484542700
25: lemfi means a quicker and safe way to send money
26: lemfi means low transaction fees and great exchange rates
25: lemfi means a 10% cashback on transfers over £100 using code sangam
26: so send money today to india pakistan or bangladesh
25: download the lemfi mobile app today
26: lemfi is regulated by the fca terms and conditions apply cashback only on the first transfer and is capped at £50 for example send £500 get £50 cashback when sending £100 plus to south asia
27: To sponsor Song of the Hour, please call 01484 549 947.

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
2: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
3: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
4: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
5: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
3: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
3: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
6: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
5: अभी कॉल कीजिए 01484549947
2: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड

0: निशाने सदा लाए जांदे झंडे नाल पहला वार कल मां दा पिछों वार
1: सिंग्स द बेबी
2: यो यो हनी सिंगर आ
1: आ ये तू पूरी दी पूरी फेमस हर जगह तेरा ही सिलसिला भावे हॉलीवुड जाके तू मार लै डीला पर मेरे नाल ही हिट होनिया तेरिया।

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका। कबर का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कबर को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और निहायत माकूल कीमतों के साथ मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश
3: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA टेलीफोन 01924 466771 Mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
4: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.

0: दिए छल्ला।
1: पुत्र चल तेनू असली रंगला पंजाब दिखाना है।
2: नचना नचना ता हर कोई आखदा है, नचे ओही जिदी अख च खुमार नचे, बिना खुशी दे नचने दा वल किथे, लख ला के कोई शिंगार नचे, बागी कोयल कूके नाले मोर चूमे, तियां विच जद कोई मुटियार नचे, चूम उठ दी उदों कायनात पमी, जद पंगड़े च कोई सरदार नचे।

अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और गुड मॉर्निंग सभी खूबसूरत समातों को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे मुखातिब है आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत। दुआओं रब करीम से कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे, कोई भी दुख आपके पास ना आए, किसी बीमारी में मुबतला है अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिल अता फरमाए, परेशानी में है अल्लाह पाक परेशानियों से निजात दिलाए। 107.9 FM और 94.7 FM पर रेडियो संगत में नशरियत आप तक पहुंच रही है और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे गीत चलाने की कोशिश की जाएगी। 9:17 और 2 सेकंड हो गए। 7 जो है वो रहेगा ठीक दोपहर के 12 बजे तक। 4 मई 2026 3 आज सोमवार का खूबसूरत सी सुबह को आगाज अल्लाह पाक ने सुबह देखनी नसीब की है। अल्लाह पाक सभी को खूबसूरत सी सुबह खुशियों के साथ देखना नसीब करे। ब्रेकफास्ट टाइम भी है और आपके साथ अच्छे अच्छे गीत भी होंगे, तो क्या ही सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और जब आप साथ निभाएंगे तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। साथ निभाने के लिए 1484817705 के जरिए कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 07444202155। अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बता दीजिएगा। हमारे सिस्टम में मौजूद हुआ तो आपके नाम करके शकीरन हमें अच्छा लगेगा।

प्रोग्राम में शामिल करते हैं सभी खूबसूरत बातों को जो प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं जिनमें है जी सदीक भाई हैलिफैक्स से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपकी खूबसूरत सी दुआओं के लिए आपने सुबह खैर भेजा है सलाम भेजा है हमारा सलाम भी कबूल कीजिएगा हमेशा खुश रहें अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन और इसके साथ हाजी सोबत भाई आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपने भी दुआएं भेजी हैं जिनमें है जी दुआ है अल्लाह पाक से कि आपको अल्लाह हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे और हमेशा अपने फजलों अपना फजलों करम फरमाए आमीन सुम्मा आमीन बहुत खूबसूरत सी दुआएं जी दुआएं देते रहा करें दुआएं लेते रहा करें दुआओं का आपकी जिंदगी में बहुत ही अमल दखल होता है तो दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं किस्मतें बदल जाती हैं हाथों की लकीरें तक बदल जाती हैं बस सच्चे और नेक दिल से दुआ करनी चाहिए वो जाह जी मैनचेस्टर से आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी शकीनन आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे सुल्ताना पहरसफील से आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और पीरजादा मिराजुद्दीन जी कश्मीर से आपका भी बेहद शुक्रिया और उम्मीद करती हूं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे सुनाइए जी पाकिस्तान का मौसम कैसा है हालात कैसे हैं पाकिस्तान और आपके लिए भी हमारी ढेरों सारी दुआएं होती हैं तो चलें जी प्रोग्राम को बाकायदगी से आगाज करते हैं जो कि सबसे पहला गीत है बादल पे चल के आ लेकिन नहीं जी मैं आपको ऐसा कभी भी नहीं कहूंगी कि बादल पे चल के आए बस आप धीरे धीरे चल के आए और बस अपनी पसंद का गीत बता दें तो मैं आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी

बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जी, बादल पे चल के आ। तो जैसा कि मैंने कहा कि बादल पे चल के आने के लिए मैं इतना मुश्किल काम किसी को भी नहीं कहूंगी, बस आपने फोन कॉल्स के जरिए बता देना है कि क्या सुनना है और किसके लिए सुनना चाहते हैं। बादल पे चल के आने को अगर मैं कहूंगी तो कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सुनहरी ख्वाब दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, उतना ही काम किया जाए जितना कोई पूरा कर सकता है। तो आने वाले एक और खूबसूरत सा गीत है जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है, मेरी दोस्त है, वो क्या कहते हैं ना कि जिगरी दोस्त जो बन जाते हैं ना, उनमें से है एक नुसरत साहबा लंदन से और फौजिया जी पाकिस्तान कराची से। उनके लिए आने वाला खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार लता जी की, दोनों की आवाज़ों में खूबसूरत सा गीत, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। ब्यूटीफुल सॉन्ग, सभी ब्यूटीफुल सामीन की नज़र, यकीनन आप सभी को ये गीत भी अच्छा लगेगा। साथ निभाने के लिए जितने भी सामीन प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं सभी के लिए बहुत सारी दुआएं भी होती हैं, सभी के लिए हम अच्छे अच्छे गीत भी सुनाते हैं। दीन और दुनिया दोनों साथ साथ होते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक वे पे जाएं और दूसरी वे भूल जाएं। दोनों जो साइड्स हैं उन पे हमें हमेशा जी वो कहते हैं ना कि मजबूती से अपने कदम जमा के रहना चाहिए। तो ये खूबसूरत सा गीत सभी सुनने वालों के नाम।

वेलकम है, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर से भी खूबसूरत बातों को। शमशाद असलम साहब पाकिस्तान गुजरात से हमारे साथ ही प्रेजेंटर हैं, खूबसूरत सा प्रोग्राम करते हैं और जी यकीनन आपको अच्छा भी लगता होगा, तो आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। शमशाद असलम साहब, आपने एक गीत बताया बादल की तरह आवारा, तो पता नहीं ये किसी गीत में से आपने निकाल के बताया है या कोई गीत है, प्लीज़ मुझे आप सही तरह से बता दें। तो नुसरत साहब आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी साथ निभाने के लिए, और अब्दुल मजीद जी हैलिफैक्स से आपके लिए भी बहुत सारी हमारी दुआएं होती हैं, और आपकी प्रज़ोर फरमाइश पे खूबसूरत सा गीत कभी भूला कभी याद किया। तो बिल्कुल जी, यादें ऐसी ही होती हैं, कभी भूल जाता है इंसान, लेकिन यादें नहीं भूलती, बस इंसान कभी एक बार बिज़ी हो जाता है तो दिमाग में और बहुत कुछ चल रहा होता है तो थोड़ा सा सीन बिहाइंड चला जाता है, अदरवाइज जो यादें होती हैं वो कहाँ भूलने देती हैं, कुछ भी ना ही भूलती हैं। तो खूबसूरत सा गीत है, ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी, इसमें थे करिश्मा कपूर थी आई थिंक, और इनके साथ राहुल राय थे। बिल्कुल जी, राहुल राय और करिश्मा कपूर की फ़िल्म थी बहुत खूबसूरत, कभी भूला कभी याद किया। तो मिलकर खूबसूरत सा गीत सुनते हैं सभी सामी के नाम, यकीनन सभी को अच्छा लगेगा। अब्दुल मजीद जी आपकी फरमाइश पे रेडियो संगम की पेशकश।

कभी भूला कभी याद किया, खूबसूरत सा गीत था, आप सभी सामीन के नाम किया, यकीनन वो क्या मिसरा बन गया जी, कभी भूला कभी याद किया, आप सभी खूबसूरत सातों के नाम किया, वाह वाह वाह। तो जी अब एक और खूबसूरत सा गीत है और ये गीत हमें ले जाएगा 10 बजे की न्यूज़ ब्रेक की जानिब। खूबसूरत सा गीत सुनते हैं किशोर कुमार लता जी की आवाज़ों में है जी, करवटें बदलते रहें सारी रात हम। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा और यही गीत पीरज़ादा में राजुद्दीन जी कश्मीर से आपके नाम भी किया जाएगा, यकीनन आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा। तो बताइएगा पीरज़ादा में राजुद्दीन जी कि पाकिस्तान का मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है, लेकिन आप कश्मीर में वहाँ पे तो शायद इतनी गर्मी ना हो, लेकिन पंजाब वाली साइड पे तो बेहद गर्मी है, मुश्किल है वहाँ पे जब लाइट चले जाती है, यकीन मानिए बेचारों का बुरा हाल हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पर अपना खसूसी रहम करे, दुआ ज़रूर कीजिए और हमेशा ही करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं बस ऐसे ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला के बनाए हुए जो भी मौसम है अच्छे ही हैं, उनमें कोई ना कोई बस बेहतरी होती है। तो थैंक यू सो मच जी, आपने लिखा सुपर प्रोग्राम, थैंक यू प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। खूबसूरत सा गीत और यही गीत हमें ले जाएगा कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के साथ साथ कमर्शियल वालों की बातें भी सुनेंगे और ये गीत सुल्तान आपा आपके नाम भी किया जाएगा, बहुत ही प्यारी सी आपा है, हरस फेल से साथ निभाती हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। खूबसूरत सी आपकी दुआ भी है जो कि आपने लिखा है, सलाम भेजा है, हमारा सलाम भी कबूल कीजिएगा, आपके सब दुख दर्द बीमारियां परेशानियां दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन सुबह खैर जिंदगी। और आपने लिखा है या रब्बे जुल जलाल व इकराम, या माल के कायनात आपके अता करदा हर हर नेमत का लाखों मरतबा शुक्रिया दुआ, शुक्रिया दुआ है कि हम सबको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ही खूबसूरत सी दुआ है जी, अल्लाह ताला सभी को इन दुआओं के वसीले से अपनी रहमतों के साए में रखे। और सुल्ताना आपा आपके नाम भी यही खूबसूरत सा गीत किया जाएगा, शकीरन आपको भी अच्छा लगेगा। हमीदा नाज़ जी लंदन से वेलकम, वेलकम जी हमीदा नाज़ जी, वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, आपकी दुआ है अल्लाह करीम आपको सदा अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन जी, अल्लाह ताला आपको भी अपनी रहमतों के साए में ही रखे। और आपका ब्रेकफास्ट अगर आप कर रही हैं तो साथ साथ खूबसूरत सा गीत भी इंजॉय कीजिएगा जो कि हमीदा नाज़ जी आपके नाम भी किया जाएगा, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 01484817705, व्हाट्सएप के लिए 07444202155। अब मुलाकात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में।

0: चाय चाहिए तो फिर
1: गो चाय,
0: कभी भी चाहिए तो फिर
1: गो चाय,
0: दिन को चाहिए, रात को चाहिए, हर वक्त चाहिए तो फिर
1: गो चाय।
2: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai, serving the people's favourite Kadak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more. Made fresh at the touch of a button. Perfect taste, perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.
3: Roton ko asane wala, dilon ko milane wala. Radio Sangam 107.9 FM.
2: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
4: News Centre at 10. Iran's threatened to attack US forces if they carry out Donald Trump's plan to free stranded ships stuck in the Strait of Hormuz. The president says they'll start guiding vessels using aircraft and guided missile destroyers. He's called it a humanitarian gesture, as many are running low on food. Here's NATO chief Mark Rutte.
5: I see more and more European countries pre-positioning essential logistical and other support close to theatre so that for the next phase they are ready. So I would argue there has been some disappointment from the US side, but the Europeans have listened.
4: Meanwhile, Keir Starmer's in Armenia meeting with EU leaders to negotiate joining a £78 billion loan scheme for Ukraine. The Prime Minister says it will support Kyiv's war efforts, strengthen ties with the bloc and give UK firms access to defence contracts. A British man's being treated in hospital in South Africa after a suspected outbreak of hantavirus on a cruise ship. The World Health Organization's confirmed three people on board the Dutch-flagged MV Hondius have died. The disease is spread by infected rodents, urine and faeces and can lead to breathing problems. Our Africa correspondent Yusra Elbegiers has a statement from the ship's owner.
6: At this stage, it's not been established whether hantavirus is linked to the three deaths connected to this voyage. The exact cause and any possible connection are under investigation. We're currently establishing the full facts and working on appropriate medical care, screening and next steps.
4: Food prices are on track to be almost 50% higher by November than they were at the start of the cost of living crisis. The price of some UK kitchen staples has risen by almost half since 2021. The NHS is introducing a one-minute jab that could help tens of thousands of cancer patients. Until now, they had to spend long periods on drips getting a drug into their system. And around 1980s Star Wars poster could fetch up to £20,000 later. It's one of several items up for auction on May the 4th, otherwise known as Star Wars Day. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.
7: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
8: Huddersfield ki fizaon mein bas ek khushboo. 30 barson ki mohabbat, zaikon ki ek kahani. Snooties peach sabar, jahan har lukma ek ehsaas ban jaye. 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
9: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12 and 2 loaded fries for £10 also finally 3 tender meals just for £5
8: chahe sham ho ya raat ki mehfil har lamha ban jaye khaas har zayka ban jaye yaad आए जायकों की इस महफिल में शामिल हूं स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर बार दिल कहे बस यही है असल मजा
9: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
10: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
11: हाँ जी याद है.
10: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
11: हाँ जी चाहिए.
10: चांदी चाहिए?
11: हाँ जी चाहिए.
10: कहाँ से लोगे?
11: चाचा जूलर.
10: फिर से बोलो.
11: चाचा जूलर.
10: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा. जल्दी बताओ कहाँ से से लोगे
11: चाचा जूलर्स चाचा जूलर्स
1: केडियां ऑफरां लाईयां वा सानू भी तो दसो
12: तो फिर सुनिए चाचा जूलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
13: चाचा जूलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 a.m. to 6:30 p.m. 218 Queen's Road Halifax HX1 4NE telephone number 01422342553 get down there for some great bargains
14: kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
15: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
16: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
17: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
15: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
14: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
15: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
18: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
19: Abhi call kijiye 01484-549947.
14: Training will be provided.
20: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
21: Are you peeping Tom?
20: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
22: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
21: Come up and see me sometime.
20: Case closed.
23: Welcome back, Khush Aamdeed. Ek dafa phir program ke dusre hisse mein sabhi khoobsurat samaton ko jo ke 9 baje se lekar ab tak mere saath saath hain. साथ निभाने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी नुसरत साहबा लंदन से आपको भी प्रोग्राम में वेलकम किया जाएगा शिकरन आपको प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा होगा और आपकी पसंद की गजल जो है वो भी आपके नाम करने जा रही हूं और पीरजादा मिराजुद्दीन कश्मीर से आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो जी शुक्रिया आपका भी हमीदा नास्ती लंदन से आपको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है गीत अच्छा लगा जो आपके नाम किया थैंक यू सो मच जी सुल्ताना आपा हैं शमशेर असलम साहब हमारे साथ साथ हैं हाजी सोबत भाई हैं सिद्दीक भाई हैं और वजहत जी मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं अब्दुल मजीद हैलिफैक्स से और इसके अलावा हमारे साथ हैं फौजिया जी ऑल द वे पाकिस्तान कराची से आप सभी का बेहद शुक्रिया और नुसरत जी आपकी प्रजोर फरमाइश पे खूबसूरत सी गजल जो कि गुलाम अली की आवाज में आपके नाम और उम्मीद है कि बाकी सबको भी अच्छी लगेगी 10:06 और 32 सेकंड हो गए साथ रहेगा ठीक दोपहर के 12 बजे तक 4 मई 2026 सोमवार का दिन आज बैंक हॉलिडे है सभी रेस्ट भी कर रहे हैं और हो सकता है कि बच्चों को लेके कोई क्या हो टाउन गया हो या कहीं बच्चों को लेके कोई प्ले एरिया में क्या हो तो जहां कहीं भी आप हैं रेडियो संगम पर नशरियात को सुन पाएंगे अपने फोन पे अगर एप्स डाउनलोड कर लें तो और मिसेस गफार हडर्सफील्ड से आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी आपकी भी आंख खुली है चैलेंज ही अच्छा हुआ पता नहीं रात को क्या खा के सोती हैं मिसेस गफार जो इतना सोती हैं कुछ ने का नाम ही नहीं

और अब जो गीत मुझे लगता है गजल है गुलाम अली की आवाज़ में, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा। नुसरत जी आपकी प्रजोर फरमाइश पे, आपके नाम और सभी सुनने वालों के नाम।

बहुत ही खूबसूरत सी गजल थी जो कि गुलाम अली की आवाज में और नुसरत साहब आपकी प्रजर फरमाइश पे आपके नाम कर दी और जी हमीदा नास जी आपको भी गजल बहुत अच्छी लगी आपने भी लिखा है जी वाओ ब्यूटीफुल गजल और आपके साथ-साथ शवाना जी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं शवाना जी आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए खूबसूरत सी दुआओं के लिए और हमेशा की तरह आप साथ निभाती हैं मेरी दुआएं हमेशा आपके लिए होती हैं बहुत ही प्यारी सी मेरी बहन है अल्लाह पाक इनको सलामत रखे तो उनको भी गजल अच्छी लगी उन्होंने भी लिखा है जी नाइस गजल थैंक यू सो मच जी आपका भी और बाकी जितने भी सामी मेरे साथ हैं सभी का बेहद शुक्रिया और नुसरत साहबा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं हमेशा पहले भी कहती हूं कि नुसरत बाकी तो सभी लिसनर जो भी होते हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम होते हैं हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ होती हैं लेकिन नुसरत साहबा से कुछ इस तरह का खास मेरा तअल्लुक रिश्ता बन चुका है कि लगाव हो गया क्योंकि हमारे जोगी साहब जो हैं उनकी ये सिस्टर हैं फर्स्ट कज़न बिल्कुल सिस्टर ही होती हैं और जब जोगी साहब का जनाजा हुआ था ये तब भी आई थी लंदन से तो प्रोग्राम में शामिल भी होती हैं और बहुत सारी यादें भी ताज़ा करती हैं इन्होंने कल भी कुछ तस्वीरें भेजी थी जो कि जोगी साहब की थी वो तस्वीरों को देख के तो वाकई पुराने वक्त याद आ गए हैं हमारे बहुत ही सीनियर अच्छे प्रेजेंटर थे प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले एक जो शख्स होते हैं वो ऐसी शख्सियत थी अल्लाह पाक उनको जन्नत में आलम काम अता फरमाए और बाकी उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए तो ये खूबसूरत सा जो पैगाम है नुसरत साहबा आपकी अम्मी जान के लिए है कि अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे क्योंकि उन्होंने बेटा कहा है तो उनका बेटा ही था लेकिन वो बहुत याद करती हैं आप कहते हैं कि वो अक्सर उनको याद करके रोती भी हैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी अम्मी जान को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे माओं को अल्लाह पाक कभी भी कुछ ना करे माओं की अपनी जगह होती है बाप की एक अपनी फजीलत होती है लेकिन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में फिर ये ख्याल आता है कि दुनिया तो फ़ानी है कोई भी नहीं रहेगा जैसे हमारे जोगी साहब भी चले गए हैं और बाकी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे पास होते हैं जो हमें छोड़ के जा चुके होते हैं तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं सबके लिए और नुसरत साहबा ये पैगाम जो है ख़ास आपके अम्मी जान के लिए है कि वो अपना ख्याल रखें और जोगी साहब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता करें तो हमारी दुआएं जोगी साहब के साथ भी हैं और आपकी अम्मी जान के लिए भी बहुत दुआएं हैं और मैं सभी से ये भी कहूंगी कि नुसरत साहबा की अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो दुआ किया करें कि जहाँ पे भी कोई है अल्लाह पाक उनको ज़रूर जी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे तो नुसरत साहबा और मैं क्या कहूँ कहने को तो लफ्ज़ इतने होते हैं लेकिन कई दफ़ा ज़ुबान जो है वो साथ नहीं देती क्योंकि जब इस तरह की शख्सियत जो होती हैं उनका हमारी जो ज़िंदगियों में एक अमल दखल होता है और फिर हम भूल जाते हैं कि हम क्या कहें उनके लिए ना तो यही कुछ है कि वैसे तो ज़हन और दिमाग में बहुत कुछ आता है लेकिन ऐसी शख्सियत के लिए अक्सर इंसान के पास अल्फाज कम हो जाते हैं तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आने वाला खूबसूरत सा जो गीत होगा लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज़ में ये गीत आप सभी सामीन के नाम किया जाएगा

और शिवाना जी ये आपके लिए है कि मोहब्बतों के सफर पे निकल के देखूंगा, मोहब्बतों के सफर पे निकल के देखूंगा, ये पुल सरात है, ये पुल सरात अगर है तो चल के देखूंगा। सवाल ये है कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि रफ्तार किसकी कितनी है, मैं आफ्ताब से आगे निकल के देखूंगा। मजाक अच्छा रहेगा ये चांद तारों से, मैं आज शाम से पहले ही ढल के देखूंगा। वो मेरे हुक्म को फरियाद जान लेता है, वो मेरे हुक्म को फरियाद जान लेता है, अगर ये सच है तो लहजा बदल के देखूंगा। उजाले बांटने वालों पे क्या गुजरती है, उजाले बांटने वालों पे क्या गुजरती है, किसी चिराग के माने जल के देखूंगा। अजब नहीं, अजब नहीं कि वही रोशनी मुझे मिल जाए, अजब नहीं कि वही रोशनी मुझे मिल जाए, मैं अपने घर से किसी दिन निकल के देखूंगा, मोहब्बतों के सफर पे निकल के देखूंगा।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जो कि लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में इस गीत को हमने किया था जी नुसरत साहबा आपके नाम भी और सभी के नाम नुसरत साहबा कह रही है जी उनका फेवरेट सॉन्ग है थैंक यू सो मच जी गीत को पसंद करने के लिए और अब एक और खूबसूरत सा गीत है मिसेस गफार आपके नाम यह खूबसूरत सा गीत किया जाएगा और किंग जी हकमत वाइक से आपसे बात नहीं हो सकी मैं दूसरी लाइन पे बिजी थी आप दोबारा फ़ोन कीजिएगा तो आपसे भी बात की जाएगी और आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं यही गीत आपके नाम भी किया जाएगा यकीनन आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा साथ निभाने के लिए 01484817705 के जरिए कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए नंबर आता है 07444202155

सभी समय का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए खूबसूरत से गीत आप तक पहुंच रहे हैं और खूबसूरत सा गीत नूर जहां बैदी हसन की आवाज में जो कि मिसेस गफार आपके नाम की आपकी पसंद का गीत और सैम और शाज आपका बेहद शुक्रिया दोनों का अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आपकी दोस्ती को लपा किसी तरह जी कायम और दायम रखे रहती दुनिया तक और आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी यह गीत भी आपको अच्छे लग रहे हैं और आपसे बात भी हुई बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके भी तो अब्दुल कय्यूम जमाती साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपकी खूबसूरत सी दुआएं खूबसूरत से फूल हमेशा हमेशा भेजते हैं अल्लाह ताला आपको भी बस इन फूलों की तरह हंसता मुस्कुराता रखे आपके फूलों से हमारी जिंदगियों में हमारे स्टूडियो में खुशबूएं महक जाती हैं बेहद शुक्रिया आपका तो आपने हालचाल भी पूछा है जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूं आप सुनाएं आप कैसे हैं आपने जैसे फूल और दुआएं भेजी हैं तो अंदाजा हो गया कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे तो शबाना जी आपने भी एक गीत का कहा तो आपकी पसंद का गीत भी जरूर मैं आपके नाम कर दूंगी साथ ही रहिएगा और सुल्ताना आपा आपसे बात नहीं हो सकी आपने फोन किया था तो मैं बिजी थी जरा उस वक्त सैम और शाज का भी फोन था फिर मिसेस गफार से भी बात हुई है बहुत अच्छा लगा तो आपका जो फोन है वो मैं अटेंड नहीं कर सकी आप दोबारा फोन करेंगे तो आपसे जरूर बात की जाएगी और उम्मीद है कि आपको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा जहांगीर जी ड्यूसबरी से आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी बेहद शुक्रिया आपका भी और आपका भी गीत जरूर आप तक पहुंचा दूंगी साथ ही रहिएगा तब तक इस गीत को सुनते हैं जो कि मेरी पसंद का गीत है शकीरन आप सभी को अच्छा लगेगा

0: तुझ।
1: बहुत ही खूबसूरत सा गीत तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। किरण आप सभी को अच्छा लगा होगा और सारा जी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। सारा जी आपको वेलकम कहूंगी, बहुत ही प्यारी सी बहन है, रसविल से साथ निभाती हैं तो हमेशा ही अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं सारा जी आपके लिए और आपने लिखा ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच जी। और नुसरत साहबा आपको भी गीत अच्छे लग रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया साथ निभाने के लिए। अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं। तो आने वाला खूबसूरत सा गीत उदित नारायण की आवाज़ों में, जो कि जी जहांगीर साहब आपकी पसंद का गीत आपके नाम करने जा रही हूँ, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। आपके साथ साथ बाकी भी जितने सामी हैं सभी गीत को इंजॉय करेंगे। और एक दफ़ा फिर मैं माजरा चाहूँगी सुल्तानापा, आपने फ़ोन किया तो उस वक्त ऑलरेडी पहले एक फ़ोन आ चुका था तो मैं फ़ोन पे थी, आपसे फिर दोबारा बात नहीं हो सकी, माजरत के साथ दोबारा फ़ोन कीजिएगा।

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सामीन का, और बहुत खूबसूरत सा गीत था आप सभी सामीन के नाम किया, जो कि जहांगीर जी ड्यूसवरी से आपकी पसंद का गीत था। यकीनन आपके साथ साथ बाकी सबने भी एंजॉय किया होगा। और सुल्ताना पा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने लिखा यू हैव नो टाइम फॉर मी, ऐसी कोई बात नहीं। बस बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जब आप फ़ोन करते हैं तो ऑलरेडी किसी का फ़ोन आया होता है। यकीन माने तीनों लाइनें एक दफ़ा ऐसी बिजी हुई हैं, एक मिसेज गफार का फ़ोन था, आपका फ़ोन था, उधर से सैम का भी फ़ोन था, तो एक टाइम पे एक का फ़ोन ही मैं अटेंड कर सकती हूँ। माजरत के साथ, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा पूरे का पूरा टाइम सुल्ताना पा आपके लिए है, आपके लिए ही हम लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा सा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। और प्रोग्राम को मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मियारी बनाना, चार चांद लगाना, आप सबके होने का जब हमें एहसास होता है, आप हमारे साथ होते हैं, तभी प्रोग्राम हमारा भी चमकता धमकता है। अदरवाइज़ गीत तो हर कोई सुनता है, घर में भी बैठे सुन सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और चलें जी, अब हमारे साथ थी शिवाना जी। शिवाना जी, आपका जो गीत है वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके नाम करूंगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो गीत अधूरा रह जाना था, इसलिए अब मैं आपकी पसंद का गीत आपके नाम नहीं कर सकती, माजरत के साथ। और क्या है जी, अब चलें जी, अधूरा सा गीत ही है, लेकिन यही गीत हमें ले जाएगा 11 बजे की न्यूज़ ब्रेक की जानिब। तो न्यूज़ ब्रेक उस पर फिर दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी।

0: Driving your taxi. Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं? The Kirklees Council Wellness Service हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है। अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं, जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है। तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है। और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है। अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484-234-095 UK Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़
3: जागते रहना
4: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
3: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
4: स्टॉप अरे वाह
3: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
4: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
3: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
5: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
6: Roton ko asane wala, dilo ko milane wala. Radio Sangam 107.9 FM.
7: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app, download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
8: Center at 11. Iran has threatened to attack US forces if they carry out Donald Trump's plan to start freeing ships stranded in the Strait of Hormuz. The US president says it's a humanitarian gesture as many of the crew are running low on food and supplies. Meanwhile, Sir Keir Starmer is in Armenia meeting with EU leaders to negotiate joining a £78 billion loan scheme for Ukraine. The Prime Minister says it will support Kyiv's war efforts. The move comes as the PM told The Observer he wants to strengthen ties with the bloc. Shadow Chancellor Sir Mel Stride insists we must see defence jobs in return for investment.
9: There should be important economic value to the United Kingdom in being involved in terms of developing our own defence sector here. We need, of course, to see the detail if an agreement is thrashed out. But yes, this is something I would welcome.
8: A British man's being treated in hospital in South Africa after a suspected outbreak of hantavirus on a cruise ship. The World Health Organization's confirmed 3 people on board the Dutch-flagged MV Hondius have died. The disease is spread by infected rodents' urine and faeces. Larry Gostin is an expert in global health.
10: Well, let's speak to the Conservatives now. Please say Shadow Chancellor Mel Stride is joining us this morning. Morning, Mel.
8: The wrong clip there. Meanwhile, NHS England says a key cancer drug will be given to patients by injection rather than through an hour-long drip. It's powerful against several types of the disease, including lung, breast and cervical cancer. Meanwhile, UK food prices are on track to be almost 50% higher by November than they were at the start of the cost of living crisis. The price of some kitchen staples has risen by almost half since mid-2021. And Princess Eugenie and her husband are expecting their third child this summer. A Buckingham Palace spokesperson says the King is delighted with the news. The couple, who married in 2018, already have two sons. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.
11: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
12: ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
13: ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
12: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ
13: ਹੈ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
12: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ Chicken, lamb, beef, free-range chicken, organic chicken, hadiyala gosht, har kisam da boneless, gurde, kaleji, batere, taza machli, desi murgi, balati kukad, siri paaye, bas banda liaye, pakaye te khaye, mehmana nu bulaye te sawab kamaye.
13: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
12: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
13: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
12: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ
14: ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸਵਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਿਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 ਐਚਐਮਸੀ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257
15: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
16: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटरिंग system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewellers.
17: Thinking about quitting smoking? The Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way. If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleyswellnessservice.co.uk or call 01484 234 095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
5: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.
3: Jagte rehna, jagte rehna.
4: So jaunga to kya hoga bhai?
3: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se red rahoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Alu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske saath ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
4: स्टॉप अरे वाह पराठा
18: पराठा स्टॉप।
3: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
19: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
3: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील, HD15HU, ओपनिंग सून। टेलीफोन 01484542700।
20: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
21: Are you peeping Tom?
20: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
22: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
21: Come up and see me sometime.
20: Case closed.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। 11:08 और 26 सेकंड हो गए हैं। साथ रहेगा ठीक 12 बजे तक। 4 मई 2026 दिन सोमवार का आप सभी का बेहद शुक्रिया। अब्दुल किशोर जमाती साहब हमारे साथ साथ हैं, जहांगीर जी हैं, सैम जी हैं, शाहज हैं, सारा है, शमशेर असलम साहब पाकिस्तान से, सुल्ताना आप हमारे साथ हैं, नुसरत जी लंदन से और फौसिया जी पाकिस्तान कराची से, शबाना जी भी हमारे साथ साथ हैं, हमीदा नास जी लंदन से हमारे साथ हैं, पीरजादा मराजुद्दीन कश्मीर से हैं, और जाहद जी मैनचेस्टर से, हाजी सोबत भाई हडर्सफील्ड से, सदीक भाई हैलीफैक्स से और अब्दुल मजीद जी भी हैलीफैक्स से हैं। तो इसके अलावा फ़ोन कॉल्स के जरिए भी हमें किंग साहब आपने भी फ़ोन किया, आपसे भी बात हुई और मिसेज गफार से भी बात हुई है, बहुत अच्छा लगा आप सब से बात करके। सुल्ताना आप आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि आपने दो दफ़ा फ़ोन किया, दोनों दफ़ा आपसे बात नहीं हो सकी मासरत के साथ। और हमारे साथ बाकी भी जितने सारमी हैं, सारा जी हमारे साथ साथ हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे हैं रेडियो संगम की नशरियात 107.9 FM पे, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 1484817705 के जरिए आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर होता है जी 07444202155। तो सारा जी आपकी पसंद का गीत आपके नाम, इस गीत के बाद फिर मैं एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी सामी के नाम करना चाहूँगी जो कि शबाना जी आपकी पसंद का गीत होगा, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। तो मिलके खूबसूरत सा गीत सुनते हैं जिसको जी मैंने आप सभी सामी के नाम करना है, मेरी पसंद का गीत, शबाना जी आपको भी यकीनन पसंद आएगा और सारा जी आपका फेवरेट सॉन्ग है, आई नो मुझे पता है। तो आपके नाम भी इसी गीत को करते हैं।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जो कि मैंने आप सभी सामी के नाम किया था बिल्कुल जी और सारा जी आपका फेवरेट सॉन्ग था आपके नाम भी किया शिवाना जी आपको भी अच्छा लगा आपके नाम भी कर दिया और बाकी भी जितने सामी मेरे साथ हैं फौजिया जी हमारे साथ साथ हैं और आप सभी को पता है कि नुसरत साहिबा भी मेरे साथ हैं सभी के लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं और सभी के लिए अच्छे अच्छे गीत भी हैं मेरी जानिब से जो अभी गीत चला था मैंने सबको डेडिकेट किया था क्योंकि हम सब का जो प्यार है वो भी बस इसी तरह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत खलूस एतमाद एतबार का होता है अगर हम इन चीज़ों को बरकरार रखें तो प्यार कभी भी कम नहीं होता खूबसूरत सैनी वे गीत था आप सभी सुनने वालों के नाम कर दिया और अब किशोर कुमार लता जी की आवाज़ में पन्ना की तमन्ना है जो कि आजकल मोस्टली सभी का फेवरेट हो चुका है और शिवाना जी आपने इस गीत को सुनने के लिए कहा है तो बताएं जी किसको डेडिकेट करना है चले मैं अपने आप को खुद ही कर लेती हूँ और बाकी आपने जिसको करना है खुद ही कर लीजिएगा फिलहाल गीत आपकी नज़र करने जा रही हूँ उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा सुल्तानापा ऐसे थोड़ी कहते हैं जी सुल्तानापा कह रहे हैं जी आई एम एंग्री विद यू सुल्तानापा देखे मैंने बताया है कि तीनों लाइनें मेरी बिजी थी उस टाइम तो मैं क्या करती एक दफ़ा एक से ही बात हो सकती है काश यहाँ पे तीन फ़ोन होते तो मैं तीनों के तीनों उठा लेती बारी बारी सबको हेलो हाय करती लेकिन फ़ोन एक है उस पर तीन लाइन्स हैं तीनों लाइनें उस टाइम बिजी थी और मैंने बता भी दिया है कि मिसेस गफार का फ़ोन था सैम का फ़ोन था और आपका फ़ोन भी आ रहा था लेकिन फिर आप ऐसे तो नाना किया करें सुल्तानापा दैट्स नो नाइस मेरी बहन आप इतनी स्वीट बहन हो तो फिर आप ऐसे बातें करती हो तो मैं खुद भी गुस्से हो जाऊंगी आपसे चलें गीत सुनिएगा बाकी बातों को फिर कंटिन्यू करेंगे गुस्सा भी करेंगे और प्यार मोहब्बत की बातें भी करेंगे

बहुत ही खूबसूरत सा गीत था किशोर कुमार लता जी की खूबसूरत सी आवाजों में और किरण आप सभी को अच्छा लगा होगा तो किंग साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप के खूबसूरत से कमेंट्स मिल रहे हैं और आपने सलाम भी भेजा है तो आपका सॉन्ग आपके नाम जो कि आपने मुझे भेजा है किरण आपके साथ-साथ बाकी सबको भी अच्छा लगेगा आशा भोसले कुमार सानू की आवाजों में है

बहुत ही खूबसूरत सा गीत आशा भोसले और कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज़ों में और सैम जी आपको भी गीत आप अच्छा लगा आपने भी लिखा जी स्वीट सॉन्ग और शिवाना जी आपको भी गीत अच्छा लगा और बाकी भी बहुत सारे सामी हैं जिनको ये गीत अच्छा लगा और शिवाना जी ने तो कहा कि आई लव दिस सॉन्ग थैंक यू सो मच शिवाना जी और जहांगीर जी आपकी पसंद का दूसरा गीत भी मैंने क्यों किया हुआ है जैसे ही टाइम मिल गया तो ज़रूर आपके नाम कर दूंगी मिसेज़ गफार भी हमारे साथ साथ हैं प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं अब आने वाला एक और खूबसूरत सा गीत है मोहम्मद अजीज़ का साथ अलका याकनिक दे रही हैं और ये गीत जो है ये की जा रहा है ऑल द वे पाकिस्तान कराची फौजिया जी बेहद शुक्रिया आपके लिए हमारी दुआएँ हमेशा रहती हैं और आपका खूबसूरत सा भेजा हुआ गीत आपके नाम और आपकी इजाज़त से आपने कहा कि सभी सुनने वालों के नाम करना है तो ठीक है जी सभी के नाम खूबसूरत सा गीत यकीनन सभी को अच्छा लगेगा

बहुत ही खूबसूरत सा गीत दिल हो गया दीवाना कुमार सानू और कृता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में शबाना जी आपका फेवरेट सॉन्ग आप तक पहुंचा दिया गया है और माजरत के साथ आपका जो दूसरा सॉन्ग है वो तो नहीं मिला लेकिन चलें जी ये गीत आप तक पहुंच गया और अब आई थिंक ये प्रोग्राम का आखिरी गीत ही होगा मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत सी आवाज़ में मेरी जानिब से आप सभी सुनने वालों के नाम और कोशिश की है कि आप सभी की फरमाइश के जितने भी गीत आपने कहे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन माजरत के साथ कि एक गीत मुझे नहीं मिला शबाना जी आपका बाकी सभी आप तक पहुंच चुके हैं जी जिसने भी कहा था और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए खूबसूरत सा गीत सुनते हैं इसके बाद फिर आपसे इजाज़त भी लेनी है साथ ही रहिएगा

0: ये खूबसूरत सा प्रोग्राम आप सुन रहे थे आपके अपने रेडियो संगम से जो कि हरिसफील के खूबसूरत सिफातियों से 107.9 एफएम और 94.7 एफएम पे और बिल्कुल शवाना जी आज तो 3 घंटों का पता ही नहीं चला लगा कि जैसे अभी 1 घंटा ही हुआ है तो 12 भी बज गए हैं तो शवाना जी कह रही हैं कि बाजी स्टे 4 अनदर आवर तो शवाना जी क्यों घर से मुझे निकलवाने का इरादा है तो मुझे तो अब कोई रखेगा भी नहीं मेरे बच्चे भी मेरे बगैर क्या करेंगे तो वैसे भी जो टाइम है बिल्कुल जी अच्छा टाइम गुजरता है तो बहुत जल्दी गुजर जाता है इसी तरह ये 3 घंटे भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी गुजर गए हैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपने 3 घंटे मेरे साथ साथ अपना टाइम स्पेंड किया है और अब आपसे इजाजत चाहूंगी मेरे पास गुफ्ता बाजी स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे पंजाबी का प्रोग्राम लेके जरूर उनका भी साथ निभाना है आपने और उम्मीद करती हूं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा दौरान प्रोग्राम कोई गलती कुतही हो तो माफ कर देना सबसे पहले तो ज्यादा जी सुल्ताना पा आपसे माजरत चाहूंगी तो चलें जी अब बाकी सब को मेरा ये कहना है कि ज़रूर आप अपनी दुआ में दूसरों को याद रखा कीजिएगा अपना ख्याल रखें आपके जो आसपास बसने वाले उनका भी ख्याल रखा करें अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी ने साथ दिया सांसें चलती रहीं सेहत ने इजाज़त दी तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी वेंसडे को और चाचा तशवाना का कॉमेंट तशवाना जी कह रहे हैं कि योर किड्स आर ग्रोन माशाल्लाह बिल्कुल जी माशाल्लाह तशवाना जी बच्चे तो मेरे बड़े हैं लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चों की माँ की ज़रूरत तो होती है ना कोई बात नहीं मैं वेंसडे को फिर 3 घंटे आपके साथ ही होंगी बस आपने वेंसडे 12 बजे तैयार हो जाना है मेरा साथ निभाने के लिए तो चलें जी मुझे इजाजत दीजिएगा कल नहीं फिर वेंसडे को मुलाकात होगी 12 से 3 तब तक के लिए मेरा आप सभी का अल्लाह हाफिज अल्लाह निगेबा
1: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
4: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
5: हरसविल की फिजाओं में बस एक खुशबू 30 बरसों की मोहब्बत जायकों की एक कहानी स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर लुकमा एक एहसास बन जाए 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
6: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12 and 2 loaded fries for £10 also finally 3 tender meals just for £5
5: chahe sham ho ya raat ki mehfil har lamha ban jaye khaas har zaika ban jaye yaad aaye zaikon ki is mehfil mein shamil hoon snooty's pizza bar jahan har bar dil kahe bas yahi hai asal maza
6: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
7: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
8: हाँ जी याद है।
7: चलो सुनाओ फिर, सोना चाहिए?
8: हाँ जी चाहिए।
7: चांदी चाहिए?
8: हाँ जी चाहिए।
7: कहाँ से लोगे?
8: चाचा ज्वेलर्स।
7: फिर से बोलो?
8: चाचा ज्वेलर्स।
7: चूड़ी, कंगन, झुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा, जल्दी बताओ कहाँ से लोगे
9: चाचा जूलर्स
10: केड़ी ऑफर लाईयां वा सानू भी तो दसो
11: तो फिर सुनिए चाचा जूलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
12: चाचा जूलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM to 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन नंबर 01422342553 Get down there for some great bargains.
13: जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول कीमतों के साथ मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश
14: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1 154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA टेलीफोन 01924 466771 Mobile 07971 092790 Please remember branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
15: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
16: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
17: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
18: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
16: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
15: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
16: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
19: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
20: अभी कॉल कीजिए 01484549947
15: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
21: चाय चाहिए तो फिर
22: गो चाय
21: कभी भी चाहिए तो फिर
22: गो चाय
21: दिन को चाहिए रात को चाहिए हर वक्त चाहिए तो फिर
22: गो चाय
23: नीड अ प्रॉपर चाय फिक्स फॉर व्हेन यू आर ऑन द गो स्किप द क्यू एंड हेड टू गो चाय सर्विंग द पीपल्स फेवरेट करक चाय क्रीमी कश्मीरी चाय कॉफी एंड मच मोर मेड फ्रेश एट द टच ऑफ अ बटन परफेक्ट टेस्ट perfect temperature and hard to beat on price available 24/7 find go chai at your local petrol station for exact locations visit gochai.co.uk go chai proper chai anytime
24: radio sangam available on 107.9 fm 94.7 fm on dab digital online on smart speaker and on our dedicated app download it now on the hour every hour this is radio sangam national and international news
25: Midday. Iranian state media claims two missiles have hit a US warship entering the Strait of Hormuz. It comes hours after Donald Trump said American forces would begin helping stranded ships out of the vital passage. The US is yet to respond. It's the latest attempt by the president to break Tehran's stranglehold over the vital route. Military analyst Sean Bell has more.
26: When they say missiles rather than drones, it might be these anti-ship missiles. They could be quite serious. But we also understand from the Iranian statement that actually both these warships turned away. Well, that would imply that they weren't disabled and therefore it could well be. They're simply warning shots.
25: Meanwhile, the Prime Minister has alluded to heightened tensions between the US President and Europe. Sir Keir Starmer says some of the alliances are not what we want them to be. He's meeting EU leaders in Armenia, discussing a £78 billion loan for Ukraine. A British man's been treated in hospital in South Africa after a suspected outbreak of hantavirus on a cruise ship. The World Health Organization have confirmed three people have now died. The disease is spread by infected rodents' urine and feces. Our Africa correspondent Yusra Elbagir has been reading a statement from the ship's owner.
27: At this stage, it's not been established whether hantavirus is linked to the three deaths connected to this voyage. The exact cause and any possible connection are under investigation. We're currently establishing the full facts and working on appropriate medical care, screening and next steps.
25: Food prices in the UK are on course to be 50% higher by November than they were 5 years ago. Researchers found rises in the cost of things like frozen vegetables, pasta, eggs and chocolate. NHS bosses say they hope a new one-minute jab will help tens of thousands of cancer patients across England. The immunotherapy injection has been shown to reduce treatment by up to 90%. And Princess Eugenie and her husband Jack Brooksbank are expecting their third child to be born this summer. Buckingham Palace says the King is delighted with the news. That's the latest.
0: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
1: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
3: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
4: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं? The Kirklees Council Wellness Service हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है। अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं, जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है। तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है। और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है। अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 kirkleeswellnessservice.co.uk Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़
5: लानिका
9: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानिका कौन है
5: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
9: अच्छा लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है
5: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
9: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
5: कंजूस कहेंगे उनका बुफे मंडे टू थर्सडे $22.99 फ्राइडे टू संडे $24.99 अंडर $11.99 and under fours free.
9: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए.
5: क्यों नहीं? वो है भी हमारे करीब Pelon New Road, Halifax HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं. जरा नंबर मिलाओ 01422613613. अभी बुक कर देते हैं.
22: जागते रहना.
28: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
22: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
28: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
22: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
28: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
22: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
15: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549947. That's 01484-549947.
29: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
30: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
29: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code SANGAM.
30: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
29: Download the LEMFI mobile app today.
30: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए हडर्सफील्ड की जान और आपका

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM रेडियो संगम हडर्सफील्ड तो कुकरी दे पंजाबी प्रोग्राम दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है तुहाडी पेशकार तुहाडी मेज़बान ते तुहाडी अपनी भैन शगुफ्ता कबूल करो जी साढ़े वालों अदाबो तस्लीमात अस्सलामुअलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल ते वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल उम्मीद है आकाश के थले तो धरती के उत्ते जिथे जिथे भी तुसी रेडियो संगम दी नशरियात सुन रहे हो खैर सुख नाल होवोगे रब ना करे जे खांसी नज़ला जुकाम या बुखार का शिकार तो साड़ियाँ प्यार भरिया दुआवां तुहाडे नाल नाल ने मई महीने की चार तारीख हो गई जी सन 2026 है तो स्टूडियो की घड़ी के 12:00 तो 16 मिनट हुए ने मेरा तो थोड़ा साथ रहेगा हूँ तो लैके ठीक सपैर 3 बजे तक इस तो पहले के प्रोग्राम का आगाज करिए अपनी सुन जी भैन रिफा जी का तह दिल ना शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पिछले 3 घंटे तो बड़ा ही खूबसूरत उर्दू का प्रोग्राम तुहाडी खिदमत दे विच पेश किया तो खूबसूरत मौसीकी दे नाल तुहाडे दिलां नूं बहलाए रख्या दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उन्हां नूं सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे ताकि वह इस तरह खूबसूरत प्रोग्राम तुहाडी खिदमत दे विच पेश करते रहन ते नाल तुहाडे दिलां नूं खुशियां दे नाल सरशार करते रहन आमीन अपनी तवज्जो ते मौजूदगी दे अहसास दिलाने वास्ते झटपट रिसीवर चुक लो ते नंबर मिला लो 01484817705 ते जे टैक्स मैसेज दे जरिए शिरकत करना चाहते हो ते ओदे लई नंबर रहेगा 07442022155 उदा भी बैंक हॉलीडे है साढ़े सारे भैन भरा बच्चे सारे घर के मौजूद होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे छुट्टी का दिन मौसम भी बड़ा अच्छा है ना तो बारिश हो रही है तो ना ही कोई दरख्त हिल रहे ने सारे सुनमुन बुकमुन होके खड़े ने तो सर्दी भी नहीं है लेकिन एक इदा जहा हबस जहा जिस तरह होया होया फिजा दे विच इस तरह होया होया लेकिन तुसी भी करो बाहर निकलो जी अपनी जिंदगी इंजॉय करो पार्कों के जाओ बच्चों को लैके कि सी साइड से निकलो ताकि दिल के खुशियां के फवारे फुटन तो भैन तुहाडा डिप्रैशन तो परेशानी दूर होवे

ऑफ कोर्स ये महफिल अज की जिहड़ी है सजना मित्रां बेलियां दे नां लई वास लई सजाई गई है जिहड़े कि रेडियो संगम दे बड़े ही पुराने शदाई ने ते रेडियो संगम उहनां दे सांवां दे विच वसदा है।

हाँ जी सजना ये महफिल असी तेरे लिए सजाई है खूबसूरत आवाज़ सी मसूद राणा की तो पेशकश थोड़े अपने मनपसंद रेडियो की तो चलो चलते हैं सुनते हैं लखविंदर वाह खूबसूरत गाने दे नाल उम्मीद है कि तुहानू जरूर पसंद आएगा गाने दे बोलने कमली यार दी कमली

0: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
1: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटरिंग system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewellers.
2: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable. Specialises in bridal wear, grooms wear and children's clothing for all occasions.
3: Visit karein Bobby Fashion. Mention karein रेडियो संगम का नाम और पाइए 100 पाउंड की छूट ऑन ब्राइडल वेयर
2: आल्सो मोर डिस्काउंट्स आर अवेलेबल ऑन ब्राइडल वेयर विद पार्टी वेयर पैकेजेस बॉबी फैशन स्पेशलाइजेस इन प्लानिंग ऑल योर पार्टी वेयर विद मैचिंग एंड डिजायर्ड कलर थीम्स फॉर वेडिंग्स
3: अमेजिंग एशियन क्लोथिंग आल्सो मेड टू मेजर ऑर्डर्स विद परफेक्ट फिटिंग
2: स्पेशल ऑफर्स फॉर ईद्स आर आल्सो अवेलेबल नाउ विद अ लार्ज कलेक्शंस ऑफ मैचिंग ज्वेलरी बैंगल्स एंड मच मच मोर बॉबी फैशन एट 312A ब्रैडफोर्ड रोड हडर्सफील्ड HD1 6LQ
3: Call 01484-769926.
2: Bobby Fashion. Fashionable living.
1: And now with a free gift with every purchase.
4: Thinking about quitting smoking? The Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way. If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleyswellnessservice.co.uk or call 01484-234-095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
5: Kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
6: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
7: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
8: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
6: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
6: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
9: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
10: Abhi call kijiye 01484-549947.
5: Training will be provided.
11: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
12: Are you peeping, Tom?
11: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
13: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
12: Come up and see me sometime.
11: Case closed.
14: Angadaiyam lene laga hai dil gudgudi si zara karne
15: ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਮੰਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਲੂਬੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਪਾਪੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੈਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ खीरे भी आ जाते हैं और तरह भी आ जाती है इतने एक चीज़ मिलती है सानू क्यूकंबर जिन्हों असी करने हैं उन्हें असी खीरा समझते हैं तो उन्हें असी तर समझते हैं लेकिन गर्मियों के मौसम के तरह जड़ियाँ वो डिफरेंट होंगे बारीक होंगी है वह रंग जो हल्का ग्रीन हों टेस्ट बहुत अच्छा हों और अक्सर जोड़ा वा पाकिस्तान दे विच जदों असी हुंदे सी छोटे हुंदे तां अक्सर स्कूलों जदों आईदा सीगा घर च दाल चावल बने हुंदे सी और उहदे नाल चटनी कच्चे अंबां दी चटनी हुंदी सीगी अजकल क्योंकि अंबियां दा अंबियां लगियां होईयां ने कच्चे अंब हाले अंब पक्के नहीं है ते बाजार दे विच आ जांदियां जदों कि पाकिस्तान दे विच नेरी वगैरह आंदी है तेज़ हवा चलदी है ते अंबियां कच्चे अंब जिहड़े ने उह गिर जांदे है थोड़े थोड़े ते उहनां नूं सारियां नूं इकट्ठा करके फिर बाजार दे विच बेचिया जांदा है ते वो अंबियां लिया के ते फिर उहदा अचार बनता है अचार दे नाल ही फिर चटनी जिहड़ी है ना बड़ी मज़ेदार बनती है अंबियां दी चटनी जिहड़ी है और उस तो बाद जेकर जे चावल उबाले जांदे आ अक्सर जिहड़ी ज़्यादा दाल बनाई जांदी है वह जो मसर साबत मसर जिहड़े हुंदे आ ना वह पकाए जांदे क्योंकि उहदी तासीर ठंडी हुंदी नाल चावल उबाल लए जांदे आ और नाल फिर उहदे अचार रख्या जांदा अचार दे नाल फिर जिहड़ा वा सलाद कटिया होया कचूमर बना के नाल रख्या हुंदा यकीन करो वह दाल चावल इन्ने मज़ेदार हुंदे आ कि अजकल दे जिहड़े आ कोरमे शोरमे जिहड़े आ ना इहना सारिआं नूं मात कर जांदे आ लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा दालों का रवाज सी खादिया जाने दालों भी किनिया किस्म दूंदियाँ मूंग और इतने तो बच्चों दालों के नावों का भी नहीं पता हाँ पहले यह समझा जाता सीगा कि जेडे दाल चावल है ना ये गरीबों का खाना अक्सर साढ़े बच्चे भी हूँ जे पुछ मम्मी क्या की पकाया तो कही है दाल चावल बने हुए तो कहें गरीबों का खाना तो इस वास्ते लेकिन अजकल जेडे अमीर लोग है उन्होंने भी दाल नू अपनी खाने दे विच शामिल कर दिता बेशक कोरमा बनिया होवे फिश फ्राई होवे जो कुछ भी होवे उहदे नाल दाल जेड़ी है जरूर बनाई जाती है और उहदा टेस्ट दाल जेड़ी आ इहदा बास दालां जेड़ियां हुंदियां वा छिलके नाल हुंदियां ने वो बास दालां जेड़ियां हुंदियां वा वो छिलकियां तो बगैर हुंदियां जेड़ियां दालां छिलकियां दे नाल हुंदियां उहनां दे विच तवानाई जेड़ी है वो बहुत ज़्यादा हुंदी है हल्के अक दे उत्ते दाल नूं पकाया जाए तो वह बड़ी खुश जायका बनती है बस साडियां भैणां ने कुकर दे विच रख के बना लैंदियां ने नहीं तुसीं देखो बना के ट्राई करके देखो अगर तुसीं साबत मसर बना रहे हो तो तुसीं उहनूं विदाउट प्रैशर कुकर बनाओ ठीक है सारे मसाले वगैरह पा के पानी पा के तुसीं उहनूं अदरक लसन का पेस्ट पा के सारिया चीज़ा पा के आराम दे नाल उहनूं गैस दे उपर रख दो गैस नूं हल्का कर दो और उहदे उपर पकण दवो उहनूं इन्नी जल्दी प्रैशर कुकर दे पाण विच नाल पकाने दे नाल खुराक जिहड़ियां दालां हुंदियां वा जिहड़ी भी चीज़ असीं बनाने आ बेशक पाया नूं लै लो तुसीं या कोई होर चीज़ भी असीं लैंदे आ उह बहुत जल्दी गल जांदी है तो उहदी तासीर इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी जिन्नी कि हल्की हल्की अग ते पकाई गई दाल दा जायका बेहतर बनाती है सब तो दसदे आ कि जी मूंग दी दाल हुंदी है मूंगी दी दाल तोती भी हुंदी है तुली हुई हुंदी है और वो येलो कलर दी हुंदी है और जिहदे उपर छिलका हुंदा है मूंगी दी दाल दे उते वो थोड़ी सबज हुंदी है और साबत भी हुंदी है साबत मूंगी दी दाल भी जिहड़ी है वो भी बहुत अच्छी हुंदी है अरहर की दाल जिहड़ी है वो उस तो बाद चने की दाल है माश की दाल है और मसूर की दाल है ये चार दाल जड़िया वा इन्हों कट्ठा करके भी पकाया जाता और यकीनन बड़ा ही टेस्ट आता वा यह मूंगी की दाल की गल करते हैं जी ये हल्की है और जल्दी हजम होने वाली है और अक्सर ये होंगे है कि अगर थोड़ा पेट खराब है तो थानू सॉफ्ट गज़ा की जरूरत है ब्रैड वगैरह या रोटी वगैरह नहीं खानी तुसी तो फिर मूंगी की दाल पा के मूंग की दाल पा के खिचड़ी बनाई जाती है और इस खिचड़ी के छिलकियां वाली दाल भी पाई जाती है और बगैर छिलकियां तो भी पाई जाती है इस वास्ते ये ज़्यादा जड़ा वा ये प्याज प्यूज इन्ने मसाले नहीं पाए जाते हैं हल्की बनाई जाती है इस दाल के विटामिन जड़ा ए ते सी ये मौजूद होंगे आ और दिल को तकवीत देते यानी कि दिल को ताकत पहुँचाते हैं जो इंसान बीमार हों टेंपरेचर हों या पेट खराब हों या लूज मोशन लगे होंगे है तो बंदे दे विच जड़ी है वो कमजोरी ज़्यादा फील होने लग जाती है ठीक है इस वास्ते ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਓ ਚਾਵਲ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਮਨੇ ਮਤਲਬ 2 ਕੱਪ ਚਾਵਲ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਗੈਰ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਵੋ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਓਇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਏਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਉ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਲ ਦਾ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਓ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟ ਚਾਵਲ ਕਰੋ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਈਏ

हाँ जी नोट कर लो 01484817705 और टेक्स्ट मैसेज करने लिए नंबर रहेगा 07444202155।

जी गल करते हैं असी मिर्च के बारे दे विच हुण पहले असी दालां दे बारे दे विच गल कीती ते हुण असी मिर्चां वल चलदे हैं कि बहुत सारे अजकल दे बच्चे जिहड़े आ मिर्चां नूं बहुत स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद नहीं करते लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं है जिहदे विच मिर्चां दे जिन्हां दे घर दे विच खाने दे विच मिर्चां इस्तेमाल नहीं हुंदियां हुण चाहे वह अपना है साढ़े इंडियन भैन भरा ने चाहे वह पाकिस्तानी भैन भरा ने मिर्चा का इस्तेमाल साड़ी कुकिंग दे विच जरूर होंदा है ते बास घर ऐसे है जिहड़े कि सुरख मिर्च का इस्तेमाल जिहड़ा वा वह घट करते ने ते वह हरिया मिर्चा जिहड़ियां वा वह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हरी मिर्च दे नाल खाने का जायका जिहड़ा वा ज़्यादा हो जाता वा और अच्छा होंदा लेकिन उहदे विच इह चीज़ हुंदी है कि सालन जिहड़ा है ना वह सालन वर्गा नहीं लगता मतलब थोड़ा फिका फिका कलर उहदा हुंदा वा जिस तरह कि असी रैड चिलीज पाउडर जदों इस्तेमाल करते हाँ तो सालन जिहड़ा वा साडी करी जो भी कुछ असी पकाते हाँ उहदा रंग जिहड़ा थोड़ा रैड वर्ग हुंदा और देखने च भी बहुत खूबसूरत लगता शुरू तो ही असी अपने शोरबे या इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां घर पक्या होंदिया वा उन्होंने असी रैड कलर से देखते आते हैं तो फिर यहो जी हांडी कहें कि जिहड़ी चीज़ देखने च अच्छी नहीं लग रही वो खाने च खाएगा तो बंदा पहले है ना देखेगा खाएगा तो बाद दे विच सॉरी लेकिन देखेगा पहले अगर उदा उनु देख के दिल तुहाडा खुश होया तो यकीनन तुसी उनु चखना भी पसंद करोगे और अगर उनु देख के तुहाडा दिल अफसुरदा हो गया अच्छा नहीं लग्या तुहानू तो तुसी उनु चखना भी पसंद नहीं करोगे इस वास्ते हरी मिर्च इस्तेमाल होंदी और अगर इन्हें तुसी कलर देना चाहते हो तो तुसी इसे कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं उहदे विच उह ज़्यादा कड़वी नहीं हुंदी लेकिन वह कलर दिंदी है साडी हांडी नूं है ना तो तुसी हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हो हुण चाइनी खाने जिहड़े आ उहनां दे विच खाणे बच्चे चाइनीज़ क्यों पसंद करन लग गए क्योंकि उहनां दे विच जिहड़ी आ मिर्च बहुत घट इस्तेमाल हुंदी है और वह जिहड़ी भी मिर्च वह मिर्च इस्तेमाल ये नहीं कि वह मिर्चा इस्तेमाल नहीं करते मिर्च इस्तेमाल करते हैं वह सुरख मिर्च की बजाय रैड जिहड़ा वा इहदी बजाय काली मिर्च जिहड़ी आ वह भी वह पाउडर नहीं इस्तेमाल करते काली मिर्च का उहनूं कुटी हुई जिहड़ी हुंदी है ना दड़दड़ी काली मिर्च हुंदी आ वह इस्तेमाल करते क्योंकि जदों असी पिसी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं जस्ट लाइक पाउडर तो वह साड़ी कुकिंग नूं काला रंग देन लग जाती है जिहड़ा कि अच्छा नहीं लगता इस वास्ते चाइनीज़ जिहड़े आ काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं लेकिन उहदा पाउडर नहीं बनाते उहनूं दड़दड़ा जिहड़ा कुट के तो फिर वह इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा वह अगर उन्हें तुसी हॉट बनाना चाहते हो फिर तुहानू दसदे आ वह फिर उहदे विच सब्ज़ मिर्चा जिहड़ियां ने वह शामिल करदे आ अक्सर जो तुसी देखो ना यूट्यूब ते या फेसबुक ते चाइनीज़ खाने जिहड़े आ देखे नहीं तुसी उन्होंने उबाले हुंदे आ चाइनीज़ खाने और लेकिन उहदे नाल सॉस जिहड़ियां उन्होंने बना के रखियां हुंदियां वा उहनां दे विच बहुत ज़्यादा मिर्चां हुंदियां रैड चिलीज़ दे विच थोड़ा गुड़ पाउंदे आ थोड़ा नमक पाउंदे आ थोड़ा लसन डाप पाउंदे आ फिर उहनूं कुट के उहदे चलो जी अगे गल करने तो पहले मैडम नूर जहान सुन लेने ताकि भी दिल जरा पशौरी हो जाए

जी वक्त हो गया है अजान जोहर दी अजान दा ते तुसी अपने एरिया दी मस्जिद दे टाइम टेबल दे मुताबिक जोहर दी नमाज अदा करो असी तुहाडे लई दुआ करांगे तुसी साडे लई दुआ करियो अल्लाह ताला साडे सारयां दीयां दुआवां नूं कबूल मंजूर करे और जिहड़ा वा सानूं पंज वक्त नमाज कायम करने दी तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन हाँ जी नहीं हले सॉरी हले अजान का टाइम नहीं होया तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह अजान शुरू होएगी ठीक है तो गल कर रहे सी जी असी मिर्च दे बारे दे विच कि सब्ज़ मिर्चा जड़ियाँ ने वो ज़्यादा खाई जांदियां ने और जो चाइनी खाने भी जड़े है ना तुसी अगर जिस तरह चाइनीज राइस बनाते हैं उन्होंने मैं जो बनाती हाँ थोड़ा जहा देसी तड़का जड़ा अपनी कुकिंग का थोड़ा जहा तड़का दिने असी उन्हों तो वह भी बड़ा ही मज़ेदार बनता है पाकिस्तान के जड़ा वा थरपारकर के जड़े इलाके है उन्होंने जी मिर्चा की काश्त बहुत ज़्यादा होंगी है और मिर्चा दी किस्मां भी तुसी देखिया होनिया ने लंबिया मिर्चा होंदिया ने मोटिया सुरख सबस छोटी मिर्च भी होंगी है दरम्यानी साइज की होंगी है और इन सारिया का टेस्ट जड़ा वा वो डिफरेंट डिफरेंट होंदा है अजकल तो तुसी सबस मिर्च लैन जाओ तो बहुत ही महंगी हुई हुई है लेकिन यह है कि सबस मिर्च जड़ी है वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है साडे लई लेकिन सुरख मिर्च ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल जड़ा वा वो साड़ी सेहत वास्ते नुकसानदेह है शिमला मिर्च नू लै लवो तुसीं जिहड़ा कैप्सीकम जिहनू कहिंदे आ लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा इहदा टेस्ट जिहड़ा फिक्का फिक्का हुंदा मिर्चा तरह जिहड़ा वा नहीं हुंदा और फिर ये सबज रंग दे विच भी आंदी है सुरख रंग दे विच भी आंदी है जर्द रंग च भी आंदी नारंगी रंग च भी आंदी है और यह सैलड के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है जिहड़ी डिफरेंट कलर यानी येलो कलर की रैड कलर की तुसीं इहनू सलाद च भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिहड़ी ग्रीन कैप्सीकम आ उह असी सब्जी के तौर पर अपने जड़े खाने हैं उन्होंने शामिल कर सकते हैं शिमला मिर्च का कीमा तुसी बना सकते हो शिमला मिर्च चिकन जो तुसी बनाओ तो वो शिमला मिर्च तुसी पा सकते हो एक बहुत ही खूबसूरत यह खुशबू दिंदी है और खाने में एक खूबसूरत लुक दिंदी है यानी कि थोड़ी ग्रेवी बनाने दे विच ज़्यादा मददगार साबित होंदी है और उस तो बाद जिहड़े यह अपने चाइनीज़ भैन भरा वा वो कीमे दे रोल्स और चाइनी खाने दे विच जिहड़ी है शिमला मिर्च नूं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और असी भी कुछ शिमला मिर्च देखो तुसी उन्हों भर के भी बनाया जा सकता वा उन्हों तुसी गोश्त दे विच भी शामिल कर सकते हो उन्हों सब्जियां जदों मिक्स वैजीटेबल बनाने असी उहदे विच भी असी शिमला मिर्च नूं इस्तेमाल करते हैं कीमा तो शिमला मिर्च भी बनाने आलू तो शिमला मिर्च भी बनाई जाती है बहुत ज़्यादा इहदी रेसिपीज़ आंदियां वा शिमला मिर्च दियाँ लेकिन साढ़े घर शिमला मिर्च जी घट वध इस्तेमाल होंगी लेकिन अजकल तो तुम पाकिस्तान भी जाओ इंडिया भी जाओ तो उत्थे शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल होंदा कहिंदे आ कि अमरीका के बछिंदे जिहड़े आ रैड इंडियनस जो 5000 साल कबल मसीह अपने उन्होंने अपने खाणिया दे विच जिहड़ा वा मिर्च नू शामिल किया इस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका ते यूरोप दे विच काली मिर्च सियाह मिर्च जिहड़ी आ ओह खाई जांदी सीगी फिर की होया जी ते जदों इह मुहिम जिहड़ी सीगी जनूबी अमरीका तक पहुँची और उन्होंने सब्जी यानी मिर्च का इलम होया तो उन्होंने अपनिया काविशा जड़िया वा तेज़ कीतियाँ और इन्होंने हिंदुस्तान के जड़ा वा 1116 के मुहिम जड़ी सी इंडिया के पहुँची तो उन्होंने हकीमा ने फिर जड़ा वा इनू खाने तो अलावा अपनिया दवाइया के भी मैडिसन होम्योपैथिक जड़िया मैडिसन होंदियां उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिता कहिंदे आ कि दिल्ली दे विच जिहड़ा वा ना दिल्ली दे बारे दे विच बहुत मशहूर आ कि उत्थे मिर्चां जिहड़ियां ना वो बहुत ज़्यादा खाईयां जांदियां ने क्योंकि एक रवायत दे मुताबक शाहजहां दे जदों शाहजहां दा वक्त सीगा सारे शहरियां नूं पाणी दी फरामी वास्ते दरियाए जमुना तो नहर कढ के

बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना है जी हिना नसरुल्ला की आवाज़ के पेशकश थोड़े अपने मनपसंद रेडियो संगम की है जिन्हों तुम सुन सकते हो 107.9 FM से और ये नाल नाल ही तुम उन्होंने सुन सकते हो 94.7 FM डैप से भी सुन सकते हो ऑनलाइन ऐप से भी सुन सकते हो तो लो जी हिना नसरुल्ला का खूबसूरत जहा गाँव खिदमत पेश करते हैं इस उम्मीद है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा

हाँ जी गल कर रहे सी असी जी मिर्चां दे बारे दे विच कि भी मिर्चां जिहड़ियां ने सबस मिर्च खाना जिहड़ी आ साडे लई किन्ना फायदेमंद है कहंदे ने कि दिल्ली दे बारे दे विच इह मशहूर है गल कि उत्थे मिर्चां जिहड़ियां सी उह बहुत ज़्यादा खाईआं जांदीआं ने ते इक रवायत है कि शाहजहां दे दौर दे विच जदों शहरियां नूं पाणी फराहम कीता गया दरियाए जमुना तों नहर कढ के ते उहदा रस्ता जिहड़ा सी दिल्ली तक बणाया गया ते जिहड़े शाही तबीब सीगे उन्होंने इस पानी नूं दिल्ली वालियां दे लिए दी सेहत वास्ते नुकसानदेह जिहड़ा करार दिता ते फिर बादशाह नूं दस्या गया कि इस तरह ये पानी दे नाल सर्दी दे अमराज जिहड़े आ यानी नज़ला जुकाम दी शिकायत जिहड़ी आ ओह लोकां दे विच ज़्यादा हो जाएगी ते बादशाह ने कहा कि इहदा हल की होना चाहीदा पता चलाओ कि इहदा हल की होवे शहरियां ने कहा कि इहदा हल ये है कि खाणियां दे विच जिहड़ी आ ना रैड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च दी मकदार नूं जिहड़ा वा ओह ज़्यादा कर दिता जावे ते इस वास्ते अज भी दिल्ली दे जिहड़ी मशहूर निहारी आ या मसालेदार बिरयानियां हैगियां वा ओह बहुत खासियां चटपटियां हुंदियां ने इहदे च ज़्यादा मिर्च दा इस्तेमाल हुंदा है यानी कि खाने च जिहड़ा वा नज़लिया मिर्चां खाने दे नाल नज़ला जुकाम दे विच जिहड़ा वा ओह आराम मिलदा वा हर चीज़ का कोई ना कोई अगर फायदा वा तो उदा कोई ना कोई छोटा मोटा नुकसान भी हुंदा हुण इंसान नूं ही तुसीं लै लवो बाज़ इंसानां दे विच जिहड़े कहंदे आ कि जी असीं हर समझदे हाँ कि जिहड़ा जिहड़ा साडा मुखालिफ हुंदा वा असीं समझदे हाँ कि उहदे विच बुराइयां ही बुराइयां वा असीं हर गल उहदे लई नैगेटिविटी सानूं उहदे वल्लों नज़र आउंदी है लेकिन अल्लाह ताला ने सारे इंसानां दे विच कुछ अच्छियां आदतां भी पाईआं ने कुछ बुरियां आदतां भी है ये नहीं कि हर इंसान परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट हाँ ना तुसी परफेक्ट हो ना कोई दूसरा परफेक्ट है सिर्फ परफेक्ट जिहड़ी है अल्लाह ताला दी ज़ात है इस वास्ते किसी ना किसी चीज़ की कमी पेशी जो होंदी है जिस तरह इंसाना च भी हो सकती है और इसी तरह जो चीज़ा असी खाते हैं कोई फल फ्रू फल जिहड़े आ या सब्जियां जिहड़ियां वा मसाले हैगे आ उहनां दे विच फायदे दे अलावा थोड़ा थोड़ा नुकसान भी हुंदा वा जिहड़ा सानूं जानना बहुत जरूरी हुंदा वा ठीक है जी कहिंदे आ कि मिर्च दे फायदे की है

हाँ जी हुण जरा नज़र करते हैं असी अपनी मिर्चा का जिहड़ा तबई फायदा हुंदा तिब्बी फायदा सानू हुंदा वा ये कहिंदे आ जी नज़ले ते जुकाम दे विच जिहड़ा वा ये सानू आराम दिंदी है ते साडे लंग्स दे विच फेफड़िया दे विच जिहड़ा रेशा जां बलगम पैदा हो जांदी है उहनू ये मिर्च जिहड़ी है साफ करदी है ठीक है नुकसान दे नाल नाल देखो इहनां दे फायदे भी किन्ने हैगे आ ये साड़ा जिहड़ा खून आ उहदे उहदा दौरानिया जिहड़ा वा उहदे विच इजाफा करदी है ठीक है जिसम दे निजामे हजम दी खाने दी हजम करने नूं खाने नूं जिहड़ी आ उहदी जिहड़ी ताकत आ उहदी जिहड़ी सलाहियत आ उहनूं 25 यानी 25% ज़्यादा कर दिंदी है यानी कि निजामे हजम जाने खाना खाने दा निज़ाम जिहड़ा वा उह तेज़ हो जांदा वा कहते हैं कि बरतानिया दे विच एक तहकीक कीती गई है ते उहदे मुताबिक 6 ग्राम मिर्चा खाने दे नाल 45 तो लैके 76 तक कैलरीज जड़ियां वा ओ मिल जांदियां वा और इस तरह वजन च कमी भी हो सकती है हुण ए सुन के तुसी जड़ा वा वजन घट करने लिए तड़ी तड़ी मिर्चा खानियां ना शुरू कर दियो कि जी साडा वजन एदे नाल घट होएगा लेकिन नहीं हर चीज़ जड़ी आ ओ इतदाल दे अंदर जड़ी आ ओदी लिमिट दे अंदर लैके खाई जाए तो उहदा फायदा हुंदा है ये तवानाई दे विच इजाफा करती है यानी ताकत दे विच इजाफा करती है अगर तुसी तंदुरुस्त हो अल्लाह ताला दे फजल व करम नाल यंग हो तुसी और अल्लाह हर बीमारी तो महफूज हो ते तुसी फिर भी इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने उह लिमिट दे अंदर लै के जिहड़ियां ने उह खाणियां वा ये नहीं कि जी हुण कह दिता है कि वजन दे विच कमी करती है तो तुसी मुठ्ठा भर भर के मिर्चा ही जिहड़ियां हांडी च पाई जावो तो या फिर खाई जावो ये इस तरह नहीं है ज़्यादा मिर्चा तुसी खा के देख लवो अगर हांडी दे विच सालन दे विच मिर्चा ज़्यादा पै जांदियां है ते बाद दे विच जिहड़ा वा साडे सीने दे विच जलन होण लग जांदी है इतदाल दे अंदर रह के हर काम करना चाहीदा है सानू ना उस तो बाद है कि कहंदे है कि अगर डॉक्टर दे कोल जाके तुसी उहदे नाल गलबात कर सकते हो और अपनी सेहत दा पहले सारा जिहड़ा वा कि उहनूं कहिंदे आ MOT वी कहिंदे जिद्दां कार दा MOT कराउंदे आ ना यानी कि अगे सीगा हुण तां पता नहीं हुंदा कि नहीं हुंदा पर असीं तां कार ही चलाने इहो जिहे काम जिहड़े बंदिआं दे सिर हुंदे आ ते MOT कराउंदे सीगे MOT दा मतलब कि कार दा हर चीज़ नूं अच्छी तरह दे नाल देखिआ जांदा सीगा कि हुण वी देखदे होणे आ कि देखदे आ कि हर चीज़ जिहड़ी आ कार जिहड़ी आ रोड ते आने दे काबिल है या नहीं इसे तरह अपने जिसम अपनी बॉडी दा जिहड़ा वा गाहे बगाहे डॉक्टर दे कोल जाके पूरा MOT कराओ यानी एक्सरे वगैरह कराओ MRI स्कैन कराओ ताकि ब्लड टेस्ट करवाओ ताकि तुहानू पता चलदा रहे कि तुहाडी बॉडी जिहड़ी है किस स्टेज ते खड़ी है बाज़ औकात ऐसा हुंदा वा कि असी चैक नहीं कराते और कई बीमारियां जिहड़ियां हुंदियां वा छुपियां हुंदियां वा जिहड़े कहिंदे हुंदे आ ना बगल जिहड़े हुंदे आ कि हुंदे आ बगल में छुरी मूँह में राम राम कहिंदे आ दुश्मन जिहड़े हुंदे आ इह इस तरह बास बीमारियां जिहड़ियां हुंदियां वा लुक के साडे जिसम दे अंदर बैठियां हुंदियां वा ते उहदा सानू पता नहीं चलदा हुंदा फिर जदों ऐन उहनां दा पूरा पूरे जिसम दे उत्ते कंट्रोल हो जांदा वा उस बीमारी दा तां फिर उहदे असरात जिहड़े आ ज़ाहिर होण लगदे आ इस वास्ते गाहे बगाहे अपना ब्लड टेस्ट करा के देखते रहो कि तुहाडी बॉडी दे अंदर जिहड़े तुहाडे किडनीज़ हैगे आ जिहड़ा तुहाडा लीवर हैगा जिहड़ा तुहाडा हार्ट हैगा वा शरियाना जिन्नियां हैगियां वा दिल दियां माफ करना वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या कोई डैमेज ता नहीं हो रहा ताकि इस तो पहले कि वड्डा नुकसान हो जाए छोटे नुकसान दे उत्तों ही असी अपने आप नूं महफूज कर लिए बाज़ औकात जदों तुसी ब्लड टेस्ट ली जांदे हां ते डॉक्टर तुहानू चैक करदा है शुगर दे बारे दे विच ते डॉक्टर कह दिंदा है कि भी बात हुण तुसी जिहड़ा वा ना शुगर तो परहेज़ करनी है तुसी इस तरह समझो कि तुसी दरिया दे किनारे ते खड़े हो ते किसी वेले भी तुसी दरिया दे पानी दे विच गिर सकदे हो यानी किस वक्त भी जिहड़ी है शुगर हो सकती है जदों इहो जी सिचुएशन आ जाए ते तुसी अपनी वॉक शुरू कर देनी है और तुसी शुगर नूं अपनी चाह दे विच कट कर देना वा कहिंदे कि लिक्विड चीज़ दे विच जिहड़ी शुगर हुंदी है जदों कोई लिक्विड मिठी चीज़ असीं पीने आ तो उह साडी शुगर दा नूं फौरन हाई कर दिंदी है
इस वास्ते जरूरी है कि जो तुहानू डॉक्टर वार्न कर दे तो तुसी उस वेले ही अपने अपनी परहेज जिहड़ी है शुरू कर देनी है यानी कि अगर शुगर की निशान डॉक्टर कह रहा है कि हाँ भी तुसी दरिया के किनारे ते खड़े हो एनी टाइम तुसी दरिया च गिर सकते हो यानी एनी टाइम जिहड़ी है तुहानू शुगर हो सकती है तो फौरन तुसी हुण शुगर होने का इंतजार नहीं करना तुसी परहेज वल चले जाना वा एक घंटे की या अद्धे घंटे की वॉक करनी है तुसी मिठिया चीज़ा जिहड़ियां उह सारियां तुसी बंद कर देनिया वा और ताकि जिहड़ी है शुगर जिहड़ी है तुहाडे कंट्रोल दे विच रहे क्योंकि ये भी एक बड़ी सख्त बीमारी है हो जाए शुगर जिहड़ी तो सारी जिंदगी मैं नहीं समझती कि शुगर घट होंदी है हाँ मैनेज कर सकते हैं असीं इन्नियां दवाइयां खाते इंसुलिन ला लो जी और गोलियां खा लो फक्कियां दे फक्के गोलियां खाई दियां सुबह भी खाओ शाम भी खाओ दोपहर भी खाओ और उस तो बाद भी शुगर का जो चैक करो तो शुगर का पॉइंट जड़ा वा वह हाई होंगे हुण देखो जींदी जान है तो दिल तो करता ही है ना कि अल्लाह ताला दी जिन्नियां भी नेमतां वा वह असी खाइए कि असी गुनाहगार ना हो जाइए अल्लाह ताला ने कहना कि मेरी अपनी सोच मैं अपनी सोच तुहानू दस रही हाँ कि अल्लाह ताला ने कहना कि ऐश गुफ्ता तैन दुनिया की हर नियमत तो नवाजिया सी तो जिंदगी तो मौत मेरे हाथ च सी उदे लिए मैं अपना टाइम फिक्स किया होया तो तू आप मेरी नियमता तो फायदा क्यों नहीं चुकया मैं ये सोचती हाँ हूँ हो सकता थोड़ी सोच ना हो लेकिन हर शख्स की सोच अलहदा होंगी है मैं इस सोच न ही मद्देनज़र रखते हुए मैं अंब आंदे अंब भी खानी हाँ तरबूज

0: हर चीज जड़ी है ना वो मैं खांदी हां ताकि मेरे अल्लाह ताला दे हुजूर जाके सुरखुरु हो जावां हां लेकिन लिमिट दे अंदर रह के जिन्नी के मैं समझदी हां कि मेरी बॉडी नु जरूरत है और देखो पेट इना चीजां दे नाल जेड़ा ना पेट असी भरना नहीं हुंदा बस लोग मिठियां चीजां डेजर्ट रख दवो आइसक्रीम हो जवे या कोई फ्रूट हो जाए तो वो समझदे आ कि असी जेड़ी है ना इना चीजां दे नाल अपनी भूख मिटानी है तो वो फिर बढ़ चढ़ के उना चीजां नु खांदे आ लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिदा सानू सानू ये सोचना चाहिदा वा कि अल्लाह ताला ने जिन्नियां सानू नेमतां अता कीतियां ने असी उना नु टेस्ट करना वा है ना कि उन्हां नूं असी थोड़ा खाना वा लिमिट दे अंदर रह के हर चीज़ खाओ जे तुसी शुगर दे भी मरीज़ हो तो मैं ये कहूँगी कि जिन्ना तुहानूं हर चीज़ तुसी खानी है मैनेज करनी है शुगर असी शुगर हट नहीं होनी जो कुछ मर्जी कर लवो हुण तुसी इंटरनेट ते देखो जी फलानी पक्की खा लो तुहाडी शुगर जिहड़ी है ठीक हो जाएगी फलाने दी शुगर ठीक हो गई नहीं शुगर जिहड़ी है ना ये ठीक नहीं हुंदी क्योंकि जो शुगर बणांदा वा साडा वो खत्म हो जाता ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੋ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਆਏ ਅੰਬ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਕ 'ਚ ਦੋ ਅੰਬ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜੋ ਨਿਮਤ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਆ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੈਸੇ ਕਿ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਰਸਬੈਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਟ੍ਰੋਬੈਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਵੀ ਖਾਓ ਨਾਲ ਬਲੂਬੈਰੀ ਵੀ ਖਾਓ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਬੈਰੀ ਵੀ ਖਾਓ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਬਲੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਿਰਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹਲਕੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਬਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ
1: रोतों को हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM
2: रेडियो संगम अवेलेबल ऑन 107.9 FM 94.7 FM ऑन DAB डिजिटल ऑनलाइन ऑन स्मार्ट स्पीकर एंड ऑन आवर डेडिकेटेड ऐप डाउनलोड इट नाउ ऑन द आवर एवरी आवर दिस इज रेडियो संगम नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज
3: U.S. Central Command says two American-flagged merchant vessels have passed through the Strait of Hormuz. It's after Donald Trump announced his forces would help in efforts to get commercial freight moving again through the vital waterway. John Storpert from the International Chamber of Shipping.
4: I think there was certainly air coverage for those vessels. At the same time, we don't know what that means for the vast number of vessels that remain trapped. And so there is still a huge amount of uncertainty in the industry as to what this Project Freedom actually means.
3: The US has denied reports that Iran's hit an American warship in the Straits with missiles. The owner of the cruise ship where there's a hantavirus outbreak says there's still a serious medical situation on board. Three people have died and a British man's in a critical condition in hospital in South Africa. Sir Keir Starmer has spoken of heightened tension between President Trump and Europe. The Prime Minister used a meeting of leaders in Armenia to announce the UK's attempt to join the EU's £78 billion recovery loan for Ukraine. A fire has broken out at flats in Edinburgh. Emergency services were called to Whitson Road shortly before 11 this morning. No casualties have been reported. Coventry are celebrating their return to the Premier League with a huge party and an estimated 50,000 people taking to the streets of the city. Frank Lampard's team are on an open bus tour to mark the club's return to the top flight for the first time in 25 years. Low local band The Enemy and team fan Tom Grennan will perform for the crowds this afternoon. And elsewhere, Chelsea against Nottingham Forest gets underway in the Premier League in an hour, while the Scottish Premiership title race continues as Hearts play Rangers. That's the latest. I'm Imani Rana.
5: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
6: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
7: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewelers.
8: Jagte rehna. Jagte rehna.
9: So jaunga to kya hoga bhai?
8: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge. क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
9: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
8: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सेलेक्ट
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
8: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700.
10: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable. Specializes in bridal wear, groom's wear and children's clothing for all occasions.
11: Visit karein Bobby Fashion. Mention karein Radio Sangam ka naam aur paye £100 ki chhoot on bridal wear.
10: Also more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
11: Amazing Asian clothing. Also made to measure. Orders with perfect fitting.
10: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewellery, bangles and much, much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road, Huddersfield HD1 6LQ.
11: Call 01484 769926.
10: Bobby Fashion, fashionable living.
7: And now with a free gift with every purchase.
12: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
13: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
14: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
15: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
16: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
12: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
16: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
17: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
18: Abhi call kijiye 01484-549947.
12: Training will be provided.
19: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
20: Hey, you peeping Tom.
19: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
21: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
20: Come up and see me sometime.
19: Case closed.
0: ਮਤ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰੇਡੀਓ ਸੰਗਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 107.9 FM ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 94.7 FM ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ

0: you had an accident driving your taxi, has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: हां भाई बच्चों कल का सबक याद है
3: हां जी याद है
2: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
3: हां जी चाहिए
2: चांदी चाहिए
3: हां जी चाहिए
2: कहां से लोगे
3: चाचा ज्वेलर्स
2: फिर से बोलो
3: चाचा ज्वेलर्स
2: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
4: चाचा ज्वेलर्स केड़ी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
5: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342553 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स
6: जागते रहना
7: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
6: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
7: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
6: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
7: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
6: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
8: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं द केकलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस वेप्स और गम फ्राहम करते हैं जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 UK Kirklees Council Wellness Service hamesha ke liye tambaku noshi chhodiye
9: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549 947. That's 01484 549 947.

जी तुसीं सुन रहे हो रेडियो संगम दीआं नशरियात 107.9 FM तो और ये नाल नाल ही तुसीं इन्हां नशरियात में सुन सकते हो 94.7 FM ते भी डब रेडियो ऑनलाइन भी ऐप ते भी और चलते हैं हुण जी सुहेल शहजाद साहब साहब फोन वाल देखो ये की कह रहे हैं

लो जी मसूद राणा की आवाज़ वाल चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है और बड़ा ही काफ़ी पुराना है, यकीन यकीनन तुहानू जरूर पसंद आएगा और गाने दे बोल भी बड़े ही सोहने ने।

उम्मीद है तो आज दा प्रोग्राम तुहानू जरूर पसंद आया होएगा और सारिया दीआं कॉलां ने और मैसेजिस ने मिलके इस प्रोग्राम नू होर भी खूबसूरत बना दिता ते चार चंद ला दित्ते अमूमन मैं दो घंटे का प्रोग्राम करती हूँ तीन घंटे का प्रोग्राम करना मैं बहुत मुश्किल लगता है लेकिन अज तो टाइम गुजरते हुए एहसास ही नहीं हुआ थोड़िया इन्ना प्यार भरिया कॉलां थोड़े इन्ने प्यार प्यारे मैसेज पढ़ के दिल में बहुत ही खुशी हुई और सेरों खून वध गया साडा।

प्रोग्राम के दौरान च अगर मेरी कोई गल ताड़े तबे नाजक ते ग्रां गुजरी हो तो मैं माजरत चाहनी हाँ। मेरे बाद जेड़ा निर्मल सिंह जी बॉलीवुड शो का प्रोग्राम लिया के तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर होंगे।

मेरी और ताड़ी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही अल्लाह ताला दा फजल व करम रिया ताड़ियां प्यार भरिया दुआवां नाल रहीयां ते जुमे वाले दिन 12 तो लेके 2 बजे तक जुमातुल मुबारक ते खुसूसी प्रोग्राम दे विच होएगी

उदों तक तुसीं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना ही नहीं आले दुआले वसने वालों का भी, और जो जो दिल के विच तो वसते हैं लेकिन नज़रों तो बहुत दूर है। शाद रहन, आबाद रहन, खुश रहन, खुशहाल रहन, खुशियां वंडते रहन, खुशियां दे नाल झोलियां भरते रहन।

0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
1: 3. U.S. Central Command says two American-flagged destroyers have transited through the Strait of Hormuz. It's after Donald Trump announced Project Freedom, using the military to guide vessels out of the key trade route blockaded by Iran. Sakir Starmer, who's meeting EU leaders in Armenia, welcomes the development.
2: Well, the situation is clearly evolving. It is really important that we get the Strait open because that is directly impacting on our economy in the United Kingdom. We're discussing that at the European Political Community Summit here this afternoon.
1: Earlier, Iran said it fired missiles at a US warship, but that's been denied by American officials. A German passenger has been confirmed as the third casualty after a suspected outbreak of hantavirus on a cruise ship in the Atlantic. One person, a British man, is being treated in hospital in South Africa. Three fire engines are dealing with a blaze at flats in Edinburgh. People have been asked to avoid the area surrounding Whitsun Road, which is closed off. Meanwhile, tens of thousands of Coventry fans have taken to the streets to celebrate their promotion to the Premier League with an open-top bus parade. It's being followed by a music festival headlined by supporter Tom Grennan. Ipswich are also on a bus tour to mark their return to the top flight. And captain Dara O'Shea says they're ready for the challenge ahead of next season.
3: Continue growing, continue learning and, you know, to keep the club in the Premier League. That is the main goal. You know, it's so hard to stay up for any promoted sides, and you know that's got to be our main aim and our main objective.
1: Today's Premier League action is just getting underway with Chelsea hosting Nottingham Forest. Forest have made 8 changes with the second leg of their Europa League semi-final against Aston Villa in mind. And Cameron Diaz has announced the birth of her third child with husband Benji Madden. The actress has shared the news on Instagram, revealing they've named the boy Nautus. The message is accompanied by a picture of a pirate ship. That's the latest. I'm Imani Rana.
4: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
5: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
6: ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
5: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ
6: ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
5: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਚਿਕਨ ਲੈਮ ਬੀਫ ਫਰੀ ਰੇਂਜ ਚਿਕਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚਿਕਨ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਨਲੈਸ ਗੁਰਦੇ ਕਲੇਜੀ ਬਟੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਛਲੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਬਲੈਤੀ ਕੁੱਕੜ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਬਸ ਬੰਦਾ ਲਿਆਏ ਪਕਾਏ ਤੇ ਖਾਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਏ
6: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
5: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
6: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
5: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ ਮੌਲਾ
7: ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹੇਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਿਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 ਐਚਐਮਸੀ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257 7
8: जागते रहना जागते रहना
9: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
8: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
9: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
8: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है next to select
9: bus main ab nahi soonga
8: paratha stop 9 black road huddersfield hd15hu opening soon telephone 01484542700
10: shu tame dhumrapan chhodvano vichari rahya chho ki please council wellness service tamne darek pagla par teko apva mate kahe chhe jo tame dhumrapan chhodva mate taiyar chho तो अमारी मैत्रीपूर्ण टीम मदद करी शके शे। અમે ધૂમ્રપાનની તૃષ્ણાઓ ઘટાડવા અને છોડવાનું સરળ બનાવવા માટે પેજ વેપ્સ અને ગમ સહિત મફત ધૂમ્રપાન બંધ કરવા માટે સપોર્ટ પ્રદાન કરીએ છીએ. ધૂમ્રપાન છોડવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થાય છે, તમારા પરિવારનું રક્ષણ થાય છે અને ખરેખર મહત્વની બાબતો માટે તમારા પૈસા બચાવે છે. અને અમારા સમર્થનથી તમે એકલા ધૂમ્રપાન છોડવા કરતા સફળતાપૂર્વક છોડવાની શક્યતા 3 ગણી વધારે છે. શરૂઆત ઝડપી અને સરળ છે. આજે જ cuckleswellnessservice.co.uk ની મુલાકાત લો અથવા 01484-234-0095 પર કોલ કરો. કિર્કલીસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ કાયમ માટે છોડી દો.
7: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट. रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें. रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं. Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
11: सिन जायकतुल मौत. हर नफ्स को चखना है मौत का जायका. कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول कीमतों के साथ. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश.
12: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1 154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA. टेलीफोन 01924 466771. Mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
13: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
14: Are you peeping Tom?
13: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective and memorable.
15: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
14: Come up and see me sometime.
13: Case closed.

महबूब इलाही साहब ब्रेडफोर्ड तो है इकरा साहब ये भी ब्रेडफोर्ड तो है नेथन जवेद पट्टी ये भी ब्रेडफोर्ड तो है बहुत ही प्यारी साड़ी जन्नत साहबा जन्नत इकबाल साहबा ये भी ब्रेडफोर्ड तो है ये सारे तुहानू सलाम कहिंदे आ वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया अरूफ हाशमी साहब ए वी ब्रेडफोर्ड तो है रेडियो संगम नु बेहद प्यार करदे है कहंदे जी प्रोग्राम बड़ा ही प्यारा लगदा हुंदा है जदों तुसीं प्यार दीआं मिठीआं मिठीआं गल्लां पंजाबी च करदे हो हां जी की करिए पंजाबी हुण बोलणी पैंदी है साडी मां बोली जो है खैर एनीवे एक होर बॉलीवुड का ही गीत है तो मरहूम मुकेश हुना दी आवाज है पूर्णिमा फिल्म का गीत है तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक अंधेरे हमें अब रास आ गए कि जो प्यार पूर टुट टट जाता हाथ कुछ लगता नहीं ते फिर बेचारा हाथ उठ बन के ते बह जांदा ते आफर लफज कहिंदा

आशा भोसले दीवाल रेडियो संगम दी पेशकश हम लख लाख पाए प्यार मगर मिलने का मजा तो आएगा ही ना।

0: लेकिन छुप छुप के मिलने से
1: कुमार सानू
0: लेकिन
1: छुप छुप के मिलने से
0: मिलने का मजा तो
1: मिलने का मजा
2: तुसी कहंदे होंगे यार विच बोलदा

0: you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
3: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
4: जागते रहना
5: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
4: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रेड होगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
5: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
4: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सेलेक्ट
5: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
4: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग soon telephone 01484542700
6: Lanika
7: Lanika
8: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये Lanika कौन है
6: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त Lanika रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
8: अच्छा Lanika वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है
6: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
8: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
6: कंजूस कहीं की उनका बुफे मंडे टू थर्सडे 22.99 फ्राइडे टू संडे 24.99 अंडर 10s 11.99 एंड अंडर 4s फ्री
8: तो इस बार मेरी बर्थडे भी Lanika में होनी चाहिए
6: क्यों नहीं वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं
9: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
10: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
11: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
12: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
13: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
9: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
13: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
14: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
15: Abhi call kijiye 01484 549947.
9: Training will be provided.
16: Chai chahiye to phir?
17: Go chai.
16: Kabhi bhi chahiye to phir?
17: Go chai.
16: Din ko chahiye, raat ko chahiye, har waqt chahiye to phir?
17: Go chai.
18: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai, serving the people's favorite kadak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more, made fresh at the touch of a button. Perfect taste. Perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.

मुख्तियार जी, करंडे निर्मल सिंह जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मियां, कैसे हैं? कहंदे जी एक ता दविंदर सिंह नू मेरा सलाम पहुंचा दो, तरलोचन सिंह नू मेरा सलाम पहुंचा दो, ते बलवीर सिंह नू भी मेरा सलाम कर दो। साधु सिंह है ते कुलवीर सिंह है, सॉरी कुलवंत सिंह है, ये ब्रेडफोर्ड तो है। कहंदे जी इन्हां नू भी मेरा सलाम कह जो रेडियो संगम तो। इकबाल सिंह ये लीड तो है, ते अवतार सिंह चीमा। कहंदे जी ये सारे दोस्तां दे मेरियां दे नाम एक गीत करना। मैं क्या क्यों क्या सारे दिन आई कर देना? कहंदे हाँ जी ना सारे दिन आए एक गीत करना। मैं क्या जरूर करांगे, हो गया समझो। सुल्ताना साहबां ਇਹ ਗੀਤ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਬਹਾ ਕਿਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸੁਬਹਾ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ।

सिर से लेके पांव तक मुझे प्यार करो शबाना साहबा कहते नाइस सॉन्ग ओ बहुत शुक्रिया तुसी लोग अच्छे हो ताइए तुहाडे वास्ते गीत भी एहो जे लाउणे पैंदे पसंद करया करो बस कह दिया करो सर से लेके पैरों तक मुझे प्यार करो

0: नमस्कार शानू
1: अगर कोई मुझसे ये पूछ
0: अलका याग्निक
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ
0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ
1: इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूं क्या
2: क्या
1: तेरी अदाओं पे मरता हूँ
0: ओए होए

तेरी अदाओं पे मरता हूँ, सिर्फ तेरी अदाओं पे। ओए होए होए, वाह जी वाह, ठीक है ना जी, कहते वाह जी वाह। लव तुझे करते हैं, लव टू लव, तेरी अदाओं

थैंक यू सुबाना जी, थैंक यू वेरी मच. यू लव ए रेडियो संगम, बहुत शुक्रिया. सुमायरा जी ड्यूजबरी से कहते क्या बात है रेडियो संगम. हाँ जी बस लव ही करता रेडियो संगम, किसी नु नफरत नहीं करता. इसे करके तक क्या लव, मैं लव करता हूँ.

जहांगीर साहब रहे ड्यूजबरी तो कहते वाह इस उम्र च भी कहता निर्मल जी प्यार करी जाते राई पल्ले प्यार गया और कुछ नहीं इस दुनिया च

थैंक यू वेरी मच तुहाडा सारयां लई जिन्हां ने मैनूं इनकर्ज कीता बस इदां ही आ प्यार वंडदे रहा करो प्यार लैंदे रहा करो ते प्यार ही दिंदे रहा करो आह क्या क्या ही बात है आरजू क्या है जस्तजू क्या है कहंदे माशाल्लाह बिल्कुल ये दिल बड़ा नदान है पता नहीं किधर नु की हो जाना पता नहीं केड़े खूज लेके वर जे

जहांगीर साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया मास्टर महमूद साहब ड्यूजबरी थोड़ी सारी टीम नु सलाम है थैंक यू वेरी मच हौसला अफजाई दा ऐ थोड़ा थोड़ा प्यार बन दिया करो थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिदा एक दूजे नाल फसना जरूर चाहिदा

0: जमशेद असलम साहब मैनचेस्टर तो कहते जी थैंक यू एहोजे गाने सुनाया करो नुसरत साहबा लंदन तो कहते जी क्या ही बात है सुल्ताना कहते नो गुड पता नहीं हूँ नो गुड कास नू कह गए पता नहीं कहते प्यार नू लव नहीं कर सन ड्यूजबरी कहते वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच बस जस्ट जू किया है क्या क्यामत हो
1: क्या मुसीबत है
0: क्या मुसीबत है

0: ब्रेक आ गई है
1: रेडियो संगम अवेलेबल ऑन 107.9 एफएम 94.7 एफएम ऑन डीएबी डिजिटल ऑनलाइन ऑन स्मार्ट स्पीकर एंड ऑन आवर डेडिकेटेड ऐप डाउनलोड इट नाउ ऑन द आवर एवरी आवर दिस इज रेडियो संगम नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज
2: A tour operator has confirmed it's dealing with a serious medical situation on a cruise ship off the coast of Cape Verde. A Dutch couple and a German national have died after a suspected outbreak of Hansa virus. A British man who's 69 is in intensive care in South Africa. Vinod Balasubramaniam is a molecular virologist and says the infection spread by rodents.
3: Hansa virus is not usually spread like COVID-19 or influenza, although it's a respiratory virus. For most Hansa viruses, casual person-to-person spread is, you know, almost very rare.
2: U.S. Central Command says two American-flagged merchant ships have successfully crossed the Strait of Hormuz. Navy-guided missile destroyers are helping commercial vessels through Iran's blockade after Donald Trump announced Project Freedom. Earlier claims that Tehran-struck U.S. warships are being played down or dismissed. Sir Keir Starmer says the benefit of joining the EU's £78 billion loan scheme for Ukraine outweighs the costs. The Prime Minister argues it's in the national interest and will help create jobs at home as well as supporting Kyiv. Researchers have found food prices in the UK are on course to be 50% higher by November than they were 5 years ago. They found rises in the costs of things like frozen veg. In sport, managerless Chelsea are taking on strugglers Nottingham Forest in the first of today's two Premier League games. Live to Mike Bovill at Stamford Bridge.
4: At half-time, it's Chelsea 0, Nottingham Forest 2. The Blues' wait for a First League goal in more than 2 months continues, despite being awarded a penalty when teenage winger Jesse Derry was taken out in the area. But Cole Palmer's penalty was well saved by Matt Zeltz, and early goals from Iwonyi and Igor Jesus make it advantage Forest. Chelsea 0, Nottingham Forest 2.
2: Man City aim to cut Arsenal's lead back to 3 points when they go to Everton this evening. And in the Scottish Premiership, Hearts can go 3 points clear at the top with victory at home to Rangers. That's the latest. I'm Imani Rana.
5: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
6: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
7: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटरिंग system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
8: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है?
9: हाँ जी याद है.
8: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
9: हाँ जी चाहिए.
8: चांदी चाहिए?
9: हाँ जी चाहिए.
8: कहाँ से लोगे?
9: Chacha Jewelers.
8: फिर से बोलो
9: चाचा ज्वेलर्स
8: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
9: चाचा ज्वेलर्स
10: केडी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो
11: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
12: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 a.m. टू 6:30 p.m. 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE. Telephone number 01422342553. Get down there for some great bargains.
13: जागते रहना, जागते रहना.
14: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
13: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है. आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
14: स्टॉप. अरे वाह. पराठा स्टॉप.
13: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
14: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
13: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.
0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.

कहिंदे निर्मल जी मैं क्या हां जी कहिंदे मोर फोर आवर चार घंटे तुसी होर बैठना इत्थे रेडियो ते मैं क्या मैं तो आज ही कह दूं कि आज हुण मैं नहीं जाना इत्थे ही मैं रात ही रह जाना मेरे लिसनर प्यार कर दे है ना कहिंदे तुसी इत्थे ही रहो मैं कह जी ठीक है जेड़े मेरे तो बाद च प्रेजेंटर ने आना उन्हां नूं अज कह देने तुसी छुट्टी कर जो अज सारे दा सारा टाइम मेरा ही आ वाह जी वाह बहुत शुक्रिया तुहाडा इन्ना वड्डा वडमुला प्यार देण दा बहुत बहुत शुक्रिया ते चलो भोली सूरत लदा मगेशकर उदित नारायण की आवाज तुहाडे सारे दे नाल ही करदे आ एक लास्ट फिगर 62 मिस कॉल दे के गए हैं सम अहमद खान चट्ठा ड्यूजबर अब्दुल्ला खान चट्ठा ड्यूजबरी कहंदे जी सलाम कह दो सारे नु लो जी हुणे लो भोली सी सूरत आ गीत सुनदे आ तुहाडे नाल भी करदे आ ब्रेव हार्ट अब्दुल्ला जी सुनो चट्ठा साहब मुड़ के नाराज नहीं होना पहला पहला पौड़ियां सूरत ही होंदियां हाय

गजाला जबीन और रोचडेल तो है अशरफ साहब ये भी रोचडेल तो है तनवीर साहब ये भी रोचडेल तो है और तो सारयां नूं सलाम कहंदे आ पीर ज्यादा महराज दीन मीरपुर पाकिस्तान हाजी सोबत साहब भी पाकिस्तान गए हुए हैं कहंदा जी साडे सारे मीरपुर तो तुहानू सारयां नूं सलाम वालेकुम सलाम जी

Kurum sahib hükümünü vaik duayın. ते अनीस साहब लिस्टर तो है ते बलविंदर सिंह भी लिस्टर तो है ए तो अनुसारे ही सलाम कहें दे ते सस्री काल कहें दे ते चलो फ्राई कर दे एक मेंदी हसन साहब होना दी उस्ताद मेहंदी हसन साहब होना दी आपां आवाज शामिल कर दें अज दे इस प्रोग्राम विच ए मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो इदे बड़े प्यारे बोल है ते ए जड़ी गजल है ते मेहंदी हसन होना दी आवाज है कई इंडियन फिल्मां दे विच भी फरमाई गई है लो सुनो फिर तो अड़े सारा दिन कर देना ब्रेव हार्ट

0: किशोर कुमार की आवाज अपन अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं बड़ा अच्छा किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि सारे ही जिन्हें आर्टिस्ट है उन्होंने सारे ही गीत फिट किए बहुत अच्छा लगता है इस तो बाद एक ब्रेक भी आ रही है वो लेनी बहुत जरूरी होती है ब्रेकों तो बिना गल नहीं बनती
1: एक दो गाने ऐसे हैं जो पुरानी फिल्म
0: सुन लो
1: मुझे बहुत दिल चाहता है कि अगर हो सके तो मैं उन्हें खुद करूं
0: एक लड़की
1: जो आई थिंक मोस्ट रोमांटिकली पिक्चराइज्ड है और दो ऐसे आर्टिस्ट जो देखने में एकदम एक दूसरे से जुदा जुदा है लेकिन देयर सो मच मैजिक व्हेन दे कम टुगेदर वन इज मिस्टर किशोर कुमार एंड द अदर इज मधुबाला उस गाने में मुझे जो बात बहुत ही अच्छी लगती है इज द अमेजिंग डांस क्वालिटी जो मिस्टर किशोर कुमार लाए हैं उस छोटे से रोमांटिक बीट के अंदर किशोर कुमार एकदम पागल है उस गाने

नूरजहां की आवाज तुहाडे सारयां दे नाल शेयर करदे हां तो मिलके एंजॉय करो

कश्यप मलिक साहब ते उन्हां दी फैमिली तुहानूं सारयां नूं सलाम कहिंदे आ अवतार सिंह बिल्डर ते उन्हां दी सारी टीम तुहानूं सलाम कहिंदे आ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬੈਂਸ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ एक मोहम्मद रफी का गीत साढ़े सारी टीम दे ना कर दो सारा साहबा तुहानू सारा नू सलाम कहिंदे आ फरीद खान कहिंदे जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मिया कैसे ठीक हो हां जी कहिंदे प्रोग्राम सुन रहा हूं बहुत प्यारा सा लग रहा है क्या बात है आपको प्रोग्राम प्यारा सा लग रहा है लो रफी दी आवाज मोहम्मद रफी की आवाज तुहाडे सारे दिनों

0: कोई नजराना लेके आया तेरा दीवाना तेरे लिए
1: दीवाना तेरे लिए
0: दाऊद कहंदा जी मेरे लिए
1: है खुशियों से
0: सारी फैमिली तुहानू सलाम कर रहे है किंग क्लिफ रोड ते रहंदे है बर्क भी मस्जिद राजा दे बिल्कुल नाल नाले पूरे शौक इंग्लैंड दे विच कीते पूरे पेंड मोर रख दे कबूतर रख दे तितर ते बटेरे रख दे नाल आंडे खान नू मुर्गे रख दे ए पप्पू मोरा वाला दा शौक है यारा दोस्तां नू भी कदे कदे खवा दिंदे आ
1: दिलों को ये धड़का
0: हुण तुसी आखोगे तुहानू खवाते होणे आ
1: दिल पे गजलगार
0: मैनू तां यार कई बारी किया मेरे कोले आंडे खाण दा टाइम ही नहीं रहिंदा

लता मंगेशकर होना दी आवाज अपन फिर शामिल कर दे हैं तो आधे सारे दिन ए प्यार करने वाले कभी डरते नहीं वाह जी वाह तांसी तपले खेची रहे

0: मैं के जी दरवाजा ते खोलो
1: हाय हाय एने सारे बैग किनु लूट लिया जे ये किथे डाका मार रहे हो जोगी जी
0: ओ जी वास्को डे गामा ने ते अमेरिका डिस्कवर कीता सी ते मैं आज हडर्सफील्ड विच गोश्त दी दुकान लब लिया है
1: हैं एने सारा गोश्त चिकन कीमा किथु ले आए हो
0: खादम सुपर से बर्कवी दे अंदर हाजी सोबत मीट एंड चिकन वाले पलिए लोके साफ सुथरी दुकान फुल्ला वर्गा ताजा गोश्त मुनासिब कीमतां 100% दलाल भले लोग ते चंगी सर्विस Chicken, lamb, beef, free-range chicken, organic chicken, hadiyala gosht, har kisam da boneless, gurde, kaleji, batere, taza machli, desi, murgi, balati kukad, siri paaye, bas banda liaye, pakaye te khaye, mehmana nu bulaye te sawab kamaye.
1: बस तो फिर हुन मैं अपने अम्मी अबू ते भैन भरावां नूं बुला लैनी आ
0: मैं मेहमाना दा किया सी
1: की किया जे फिर आख्यो
0: जी कुछ नहीं बचाई हां मेरे आ मौला
2: ये दो तो ऐसे ही लगे रहेंगे आप जाइए हाजी सोबत मीट एंड चिकन इनसाइड खादिम सुपर से 1 ब्लैक रोड बर्कवी हडर्सफील्ड मंडे टू सैटरडे 9 टू 7 एंड संडे 10 टू 6 एचएमसी अप्रूव्ड 100% हलाल टेलीफोन 01484456257 दैट्स 01484456257
3: Thinking about quitting smoking? The Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way. If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleyswellnessservice.co.uk or call 01484 234095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
2: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ رابطہ कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
2: लानिका
3: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानिका कौन है
2: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
3: अच्छा लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है
2: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
3: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
2: कंजूस कहेंगी उनका बुफे मंडे टू थर्सडे $22.99 फ्राइडे टू संडे $24.99 अंडर 10 $11.99 एंड अंडर 4 फ्री
3: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए
2: क्यों नहीं वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं
4: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
5: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
6: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
7: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
5: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
8: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
9: अभी कॉल कीजिए 01484549947
4: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
10: लेट्स गो

0: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
1: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटरिंग system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
2: Jagte rehna. Jagte rehna.
3: So jaunga to kya hoga bhai?
2: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki के पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
3: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
2: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
2: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
4: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
5: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
6: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
7: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
5: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
8: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
9: अभी कॉल कीजिए 01484549947
4: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
10: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
11: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
10: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code SANGAM.
11: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
10: Download the LEMFI mobile app today.
11: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.

0: हर सिल की फिजाओं में बस एक खुशबू 30 बरसों की मोहब्बत जायकों की एक कहानी स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर लुकमा एक एहसास बन जाए 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
1: 2 12 इंच पीसेस फॉर £12 3 12 इंच पीसेस फॉर £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12, 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12, and 2 loaded fries for £10. Also, finally, 3 tender meals just for £5.
0: Chahe sham ho ya raat ki mehfil, har lamha ban jaye khas, har zaika ban jaye yaad. Aaye zaikon ki is mehfil mein shamil hoon, Snooty's Pizza Bar, jahan har baar dil kahe, bas yahi hai asal maza.
1: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
2: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
3: हाँ जी याद है.
2: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
3: हाँ जी चाहिए.
2: चांदी चाहिए?
3: हाँ जी चाहिए.
2: कहाँ से लोगे?
3: चाचा ज्वेलर्स.
2: फिर से बोलो.
3: चाचा ज्वेलर्स.
2: चूड़ी, कंगन, झुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा. जल्दी बताओ कहाँ से लोगे?
3: चाचा ज्वेलर्स. चाचा ज्वेलर्स.
4: केड़ी ऑफर लाईया वा? सानू भी तो दसो.
5: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर. यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू.
6: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE. टेलीफोन नंबर 01422342553. Get down there for some great bargains.
7: Chai chahiye to phir
8: go chai.
7: Kabhi bhi chahiye to phir
8: go chai.
7: Din ko chahiye, raat ko chahiye, har waqt chahiye to phir
8: go chai.
9: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai, serving the people's favorite kadak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more. Made fresh at the touch of a button. Perfect taste, perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.

0: you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: जागते रहना जागते रहना
3: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
2: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
3: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
2: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
2: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
4: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं द कर्कलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस वेप्स और गम फ्राहम करते हैं जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़िए
5: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

दिन रात आपके साथ रेडियो संगम हडर्सफील्ड और उसके मज़ाफात में अब वक्त हुआ जाता है अजान असर का। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी मकामी मस्जिद के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। यह अजान मुमताज लीड्स के तआवुन से पेश की जा रही है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
3: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
4: बॉबी फैशन इज ऑल सेट टू मेक योर स्पेशल डे रिमार्केबल स्पेशलाइजेस इन ब्राइडल वेयर ग्रूम्स वेयर एंड चिल्ड्रंस क्लोथिंग फॉर All occasions.
5: Visit Kare Bobby Fashion. Mention Kare Radio Sangam ka naam aur paye 100 pound ki chhoot on bridal wear.
4: Also, more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
5: Amazing Asian clothing. Also, made to measure. Orders with perfect fitting.
4: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewelry, bangles and much, much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road. Road, Huddersfield HD1 6LQ.
5: Call 01484 769926.
4: Bobby Fashion, fashionable living.
0: And now with a free gift with every purchase.
6: जागते रहना जागते रहना
7: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
6: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
7: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
6: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सेलेक्ट
7: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
6: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
8: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

0: 2553. Get down there for some great bargains.
1: जागते रहना, जागते रहना.
2: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
1: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
2: स्टॉप. अरे वाह, पराठा स्टॉप.
1: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
1: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.
4: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट. रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें. रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं. Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guaranteed to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
2: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: लानिका
4: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानिका कौन है
3: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
4: अच्छा लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती हैं
3: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
4: खूब पैसे खर्च करके आए होंगे
3: कंजूस कहीं की
0: उनका बुफे मंडे टू थर्सडे 22.99 फ्राइडे टू संडे 24.99 अंडर 10s 11.99 And under fours free.
4: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए
3: क्यों नहीं वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं
5: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
6: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
7: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
8: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
6: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
6: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
9: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
10: अभी कॉल कीजिए 01484549947
5: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड

0: दिन रात आपके साथ रेडियो संगम हडर्सफील्ड और उसके मजाफात में अब वक्त हुआ जाता है अजान मगरिब का। ये अजान हाजी जूलस हैलीफैक्स किताबुन से पेश की जा रही है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमामीन।
1: अल्लाह

0: अगर आप भी सदकाए जारिया के तौर पर एक अजान स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अभी रेडियो संगम से राब्ता कीजिए ऑन 01484549947। दिन रात आपके साथ रेडियो संगम,
1: रोतों को हंसाने वाला, दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM।

0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
1: People have been killed and two seriously injured after a car ramming in Germany. It ploughed into bystanders in a pedestrian zone in the eastern city of Leipzig. A local man's been detained. Saxony's Interior Minister Armin Schuster has been giving more details.
2: It is very likely that it was an isolated incident. Leipzig is absolutely safe and people can use the pedestrian area. A 33-year-old German citizen was arrested.
1: Elsewhere, authorities in Cape Verde are still not allowing a cruise ship at the centre of a suspected hantavirus outbreak to dock there. Health officials say it's as a precaution. Three people have died and a British tourist in hospital. The situation in the Strait of Hormuz is highly unclear, with contradicting narratives. America's dismissed reports that two Iranian missiles hit a warship, while Tehran's disputing claims that two US-flagged merchant ships have successfully crossed the key trade route. Two people have been arrested on suspicion of arson after a fire at a memorial wall in North London's Golders Green. It broke out in the heavily Jewish populated area in the early hours of last Monday. To sport now, where Manchester City are aiming to cut Arsenal's lead at the top of the Premier League back to 3 points, with victory away to Everton. Shane Pinnington is at Hill Dickinson Stadium.
3: Where it's Everton 0, Manchester City 1, and Jeremy Doku's strike here has the visitors in front and on course to close that gap on the leaders Arsenal down to 3 points tonight. Pep Guardiola's men have dominated and should be further in front, with Shirky on three occasions and Semenyo missing good chances. But at the other end, Beto nearly fired Everton in front, but for a smart save by Donnarumma. It's Everton 0, Manchester City 1.
1: Nottingham Forest have taken another step towards safety after stunning Chelsea 3-1, and Hearts have ensured they remain on course for the Scottish Premiership title with a 2-1 victory at home to Rangers. The leaders had to come from behind to go 3 points clear at the top. That's the latest. I'm Imani Rana.
4: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
5: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
6: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
5: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
7: or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
8: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
9: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
10: हडसविल की फिजाओं में बस एक खुशबू 30 बरसों की मोहब्बत जायकों की एक कहानी स्नूटीज पिज्जा बार जहां हर लुक्मा एक एहसास बन जाए 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
11: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 two 100% Angus beef smash burgers for £12, two fresh chicken fillet breast burgers for £12, and two loaded fries for £10. Also, finally, three tender meals just for £5.
12: Chahe sham ho ya raat ki mehfil, har lamha ban jaye khas, har zayka ban jaye yaad. आए जायकों की इस महफिल में शामिल हूं स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर बार दिल कहे बस यही है असल मजा
11: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
13: Kya aap tambaku noshi chhodna chahte hain? The Kirklees Council Wellness Service har kadam par aapki madad ke liye maujood hai. Agar aap tambaku noshi chhodne ke liye taiyar hain, to hamari team aapki madad kar sakti hai. Hum muft tambaku noshi chhodne ki madad पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं, जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है। तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है। और हमारी मदद से आप तीन गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है। अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484-234-095 UK Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़िए
14: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
15: जागते रहना, जागते रहना.
16: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
15: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
16: स्टॉप. अरे वाह. पराठा स्टॉप.
15: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
16: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
15: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.
17: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
18: Are you peeping Tom?
17: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
19: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
18: Come up and see me sometime.
17: Case closed.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना

कभी यूं भी आ मेरे रूह बरू, तुझे पास पाकर मैं रो पड़ूं। मुझे मंजिल इश्क पे हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुना करूं। कभी सजा लूं तुझको आंखों में, कभी तस्बीहों पे पड़ा करूं। कभी झूम लूं तेरे हाथों को, कभी तेरे दिल में बसा करूं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मुबशिर अली और आप सुन रहे हैं रेडियो संगम 107.9 FM और 94.7 FM हर्सविल की सरजमीन से। जी बिल्कुल, दिन है आज सोमवार का और तारीख 4 मई और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक इस वक्त टाइम हो जाता है 9:15। मेरा और आपका साथ ठीक 2 घंटे का, जिस दौरान आपसे होंगी बहुत सारी बातें। प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ गीत, कुछ गज़लें, कुछ अशआर जो आप हमें भेजेंगे या आप हमसे बात करेंगे। सो हमसे बात करने के लिए नंबर हमारा वही पुराना 01484817705। और अगर आप हमें कुछ भेजना चाहें, कुछ अशआर, कुछ गज़ल, कुछ गीत, तो व्हाट्सएप नंबर 07442021555 पे। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और मिलाइए नंबर। होंगी आपसे बहुत सारी बातें, कुछ सुनाएंगे आपको गीत, कुछ दिल का हाल हमारे साथ रेडियो संगम दिलों को मिलाने वाला। जी बिल्कुल, प्रोग्राम में शामिल होने पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा

जी बिल्कुल, प्रोग्राम में शामिल होने पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हुरी फातिमा जी आपका, और सना जी हमारे साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगा, चौधरी नबील साहब लीड से हमारे साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और बिल्कुल फैसल महमूद मेहर साहब ब्रेडफोर्ड से हमारे साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगा।

दर्द सहने में कमाल रखती थी, सवाए खुद के वो सब का ख्याल रखती थी। हाँ वो नाजों से पली बाबा की लाडली गुड़िया, जाने कैसा हौसला बेमिसाल रखती थी। लपे आती न थी कभी हरफे शिकायत, वो वीरान आंखों में लाखों सवाल रखती थी। आंख नम थी, लबों पे था तबस्सम उसके, जाने कैसे वो इतना जब्ते कमाल रखती थी। दिल में दर्द का समुंदर लेकर हर वक्त, जाने आंसू कहाँ संभाल रखती थी। बेचैन शहर की वो पुरसुकून सी लड़की, रस्म दुनिया का कितना ख्याल रखती थी। फैसल महमूद महर हमारे साथ ब्रेडफोर्ड की सरजमीन से आपकी भेजी हुई गजल को प्रोग्राम में शामिल किया। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम सुनने और तमाम देखने वालों का, जो जो जहां जहां से भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर।

जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद इस वक्त मुबशर साहब और सलाम दे रहे हैं हमें। वालेकुम सलाम साहब जी, हमारे साथ मौजूद साहब जी, आपका भी बेहद मशकूर। और ज़ियाल कुमर साहब हर्सविल की सरजमीन से हमारे साथ, आपका भी बेहद मशकूर। पूरी फातिमा जी आप हमारे साथ, आपका भी बेहद मशकूर। चौधरी दानियाल हुसैन साहिब लेस्टर से हमारे साथ, और आज वो थोड़े से परेशान हैं क्योंकि वो परदेश में और उनके वालद मोहतरम इस वक्त पाकिस्तान जेलम की सरजमीन से, आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जिसकी वजह से दानियाल हुसैन बड़े परेशान हैं। तो प्यारे भाई, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके वालद को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। सो तमाम अहबाब से भी गुजारिश है कि वो अपनी दुआओं में हमारे प्यारे भाई के वालद मोहतरम को याद रखें।

ते आज न साढ़े नाल मेरा पुत्र हुसैन भी मेरे नाल आया बैठा है अज करियून निकलिया वा ते कहंदा है कि आज मैं भी शो करसा

जी बिल्कुल, और प्रोग्राम में शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। शबाना जी हमारे साथ हर उसकी के साथ जमीन से, चौधरी शायान बर्मिंघम से, और चौधरी रेहान जट साहब हमारे साथ मौजूद इस वक्त ओल्डम की सरजमीन से, राजा सुल्तान जैब साहब हमारे साथ मौजूद, और हादी चौधरी जी हमारे साथ बिल्कुल बाटले की सरजमीन से, और वी लव डिजर्ट्स हमारे साथ मौजूद, नवीद अवान हमारे साथ मौजूद, और माही खान जी हमारे साथ मौजूद हर्षफील की सरजमीन से,

0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
0: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ
1: ਹੈ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
0: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਚਿਕਨ ਲੈਂਬ ਬੀਫ ਫਰੀ ਰੇਂਜ ਚਿਕਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚਿਕਨ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਨਲੈਸ ਗੁਰਦੇ ਕਲੇਜੀ ਬਟੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਛੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਬਲੈਤੀ ਕੁੱਕੜ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਬਸ ਬੰਦਾ ਲਿਆਏ ਪਕਾਏ ਤੇ ਖਾਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਏ
1: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
0: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
1: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
0: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ ਮੌਲਾ
2: ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹੇਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸਰਵਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਿਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 ਐਚਐਮਸੀ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257
3: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
4: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
5: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है?
6: हाँ जी याद है.
5: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
6: हाँ जी चाहिए.
5: चांदी चाहिए?
6: हाँ जी चाहिए.
5: कहाँ से लोगे?
6: Chacha Jewelers.
5: से बोलो
6: चाचा ज्वेलर्स
5: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
6: चाचा ज्वेलर्स
7: केडी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो
8: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
9: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 a.m. टू 6:30 p.m. 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE. Telephone number 01422342553. Get down there for some great bargains.
10: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
11: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
12: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
13: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
11: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
10: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
11: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
14: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
15: Abhi call kijiye 01484-549947.
10: Training will be provided.
16: Chai chahiye to phir?
17: Go chai.
16: Kabhi bhi chahiye to phir?
17: Go chai.
16: Din ko chahiye, raat ko chahiye, har waqt chahiye to phir?
17: Go chai.
18: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai, serving the people's favorite kadak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more. Made fresh at the touch of a button. Perfect taste. Perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.
19: Lock it in and rip the knob off.
2: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
19: Radio Sangam, 87.9 FM.

0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
1: From the Sky News Centre at 10, a tour operator has confirmed it's dealing with a serious medical situation on a cruise ship off the coast of Cape Verde. A Dutch couple and a German national have died after a suspected outbreak of hantavirus. A British man who's 69 is in intensive care in South Africa. Vinod Balasubramaniam is a molecular virologist and says the infection spread by rodents.
2: Hantavirus is not usually spread like COVID-19 or influenza, although it's a respiratory virus. For most hantaviruses, casual person-to-person spread is, you know, almost very rare.
1: Two people have been killed and another two seriously injured after a car rammed into a crowd in eastern Germany. Authorities say it ploughed into the central pedestrian zone in Leipzig. The driver of a Volkswagen SUV has been arrested. President Trump says two US-flagged merchant vessels have successfully transited through the Strait of Hormuz. It's after his announcement that 15,000 troops would help seafarers stranded in the crucial waterway to try to break Iran's stranglehold. Britney Spears has settled a drink driving case by pleading guilty to a lesser charge of reckless driving involving drugs or alcohol. The pop star was pulled over by police in California in March. In sport, Manchester City have been trying to cut Arsenal's lead at the top of the Premier League away to Everton. Live to Shane Pinnington at Hill Dickinson Stadium.
3: Well, it's finished Everton 3, Manchester City 3, and it's advantage Arsenal in the title race as Pep Guardiola's men drop points here after a crazy second half. Doku fired City in front, only for Everton to turn things around and go 3-1 up through goals from Jake O'Brien and a double from Tierno Barry. But City went on as Erling Haaland made it 3-2 and Doku couldn't home the equaliser late on.
1: And Chelsea suffered a sixth consecutive top-flight defeat in losing 3-1 at home to Nottingham Forest. And Rangers are all but out of the Scottish Premiership title race. That's after a 2-1 defeat at Leaders Hearts. That's the latest. I'm Cam Hall.
4: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
5: Kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
6: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
7: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
8: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
6: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
6: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
9: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
10: अभी कॉल कीजिए 01484549947
5: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
11: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
12: आर यू पीपिंग टॉम
11: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
13: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
12: Come up and see me sometime.
11: Case closed.
14: सिन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول कीमतों के साथ मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश
15: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1 154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA टेलीफोन 01924 66771 mobile 07971092790 please remember branches in Birmingham Manchester and Sheffield also
16: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549 947. That's 01484 549 947.

0: अगर आप भी सदकाए जारिया के तौर पर एक अजान स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अभी रेडियो संगम से राब्ता कीजिए ऑन 01484549947। दिन रात आप
1: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
3: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
0: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
4: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
5: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
6: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
4: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
4: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
7: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
8: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
9: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
10: आर यू पीपिंग टॉम?
9: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजंस। इट वाज ब्रोकन, यस, इट वाज पॉइंटलेस। देन इट हिट मी, एडवर्टाइजिंग ऑन दिस लोकल रेडियो station's the answer. It's low cost, effective and memorable.
11: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
12: Come up and see me sometime.
9: Case closed.
13: Jagte rehna, jagte rehna.
14: So jaunga to kya hoga bhai?
13: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge, kyunki paratha stop leke aa raha hai aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
14: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप!
13: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
14: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
13: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून। टेलीफोन 01484542700।

0: मैं क्या जी दरवाजा देखो लो
1: हाय हाय एने सारे बैग किनु लूट लिया जे ये किथे डाका मार रहे हो जोगी जी
0: ओ जी वास्को डे गामा ने ते अमेरिका डिस्कवर कीता सी ते मैं आज हडर्सफील्ड विच गोश्त दी दुकान लब लिया है
1: हैं एने सारा गोश्त चिकन कीमा किथु ले आयो
0: खादम सुपर से बर्कवी दे अंदर हाजी सोबत मीट एंड चिकन वाले पलिए लोके साफ सुथरी दुकान फुल्ला वर्गा ताजा गोश्त मुनासिब कीमतां 100% दलाल भले लोग ते चंगी सर्विस चिकन लैम बीफ फ्री रेंज चिकन ऑर्गेनिक चिकन हड्डी वाला गोश्त हर किस्म दा बोनलेस गुर्दे कलेजी बटेरे ताजा मछली देसी मुर्गी बलैती कुकड़ सिरी पाए बस बंदा ल्याए पकाए ते खाए मेहमानां नु बुलाए ते सवाब कमाए
1: बस तो फिर हुन मैं अपने अम्मी अबू ते भैन भरावा नु बुला लनी आ
0: मैं मेहमाना दा किया सी
1: की किया जे फिर आख्यो
0: जी कुछ नहीं बचाइयां मेरिया मौला
2: ये दो तो ऐसे ही लगे रहेंगे आप जाइए हाजी सोबत मीट एंड चिकन इनसाइड खादिम सुपर से 1 ब्लैक रोड बर्कवी हडर्सफील्ड मंडे टू सैटरडे 9 टू 7 एंड संडे 10 टू 6 एचएमसी अप्रूव्ड 100% हलाल टेलीफोन 01484456257 दैट्स 01484456257
3: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
4: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
5: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
6: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
4: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
3: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
4: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
7: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
8: अभी कॉल कीजिए 01484549947
3: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
9: जागते रहना
10: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
9: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रेड होगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
10: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
9: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
10: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
9: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए 3000 पाउंड्स तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए 1000 पाउंड तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ رابطہ कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
2: आईड बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
3: आर यू पीपिंग टॉम
2: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
4: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
3: Come up and see me sometime.
2: Case closed.
5: जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول कीमतों के साथ मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश
6: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1 154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA टेलीफोन 01924 466771 Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester, and Sheffield also.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
3: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
4: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
5: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
3: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
3: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
6: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
5: Abhi call kijiye 01484549947.
2: Training will be provided.
7: Jagte rehna, jagte rehna.
8: So jaunga to kya hoga bhai?
7: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske sath sath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
8: स्टॉप, अरे वाह, पराठा स्टॉप.
7: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
8: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
7: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो संगम 107.9 FM. दिलों को मिलाने वाला.

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
4: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
5: आई बीन टास्क टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
6: आर यू पीपिंग टॉम
5: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
0: सिन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول कीमतों के साथ मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश
8: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1 154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA टेलीफोन 01924 66771 Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484549947. That's 01484549947.
1: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
2: हाँ जी याद है।
1: चलो सुनाओ फिर। सोना चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए।
1: चांदी चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए।
1: कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स।
1: फिर से बोलो।
2: चाचा ज्वेलर्स।
1: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा। जल्दी बताओ कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स। चाचा ज्वेलर्स।
3: केड़ी ऑफर लाइया वा? सानू भी तो दसो।
4: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू।
5: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342553 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स।
6: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल local advertising.
7: Are you peeping Tom?
6: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
8: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
7: Come up and see me sometime.
6: Case closed.

0: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
1: Radio Sangam, 87.9 FM.